FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की अष्टमी तिथि तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में

0: द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्त का अटूट संबंध है। जो भक्त उनका सुमिरन, स्मरण और ध्यान करता है, उसके हृदय और आत्मा में प्रभु आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि सच्चा भगवत भक्त सदैव आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। भगवान भोले शंकर करुणा सिंधु हैं, इसलिए वे भक्त के हृदय में करुणा के रूप में प्रकट होते हैं। वे प्रेम के सागर हैं, अतः भक्त के भीतर प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। और जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं।

प्रभु के कई नाम रूप और आकार हैं। हम चाहे जिस किसी नाम रूप या आकार का स्मरण करें, भक्ति में समर्पण की भावना ही सर्वोपरि होती है। संत कबीर कहते हैं, एक ज्योति से सब उत्पन्नों, कौन बामहन कौन सोद। आत्मा की कोई जाति नहीं है, सब जीव उस एक परम ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। ना कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई अच्छा है ना बुरा। जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहां होए। जात पात के कीच में डूब मरो मत कोई, प्रभु की कोई जाति नहीं है, तो इसके भक्तों की क्या जाति हो सकती है।

राम से बड़ा राम का नाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पतित पावन नाम जन्म से मृत्यु तक हर सनातन धर्मी के जीवन से गहराई से जुड़ा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक ही नहीं, सुदूर पूर्व के अनेक देशों में भी भगवान श्री राम का नाम असाधारण श्रद्धा के रूप में लिया जाता है। लोकनायक श्री राम भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक और लोकतांत्रिक मूल्यों का पर्याय माने जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम के जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटा जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे अयोध्या के राजकुमार राम से लोकनायक श्री राम में रूपांतरित हो गए। इस वन पथ में श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। इस वन पथ में वे अपने चरित्र द्वारा एक अनोखे सेतु का निर्माण कर सारी समाज को जोड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए भारतीय संतों और चिंतकों का विश्वास है कि जब सारे सेतु यानी सारे उपाय टूट जाएंगे तो भी श्री राम का सेतु सारी समाज को मिलाने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहेगा। इसलिए भजो रे भैया राम गोविंद हरी।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्र श्री के हैं, संगीत सतीश भाटिया का।

बाली वध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, स्वर शुप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्रश्री के थे, संगीत सतीश भाटिया का। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6:45 में हैं। लीजिए सुनिए देश का

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा, पहले आज की तिथि और टुडेज अपडेट। आज सोमवार है, विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा। साथियों, आज है संत कबीर जयंती, आप सभी को संत कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब टुडेज अपडेट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण के लिए गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। चौथा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। टीम इंडिया को जीत की बधाई।

सुबह 7:10 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनते हैं सुबह 8:30 बजे। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय आपका जाना पहचाना सुबह 10 से 11 बजे तक। कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर।

1744221322। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:30 पर। शाम 5:45 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:20 पर गीता संदेश में आज आपको सुनवाएंगे 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 15 की व्याख्या करेंगी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी।

किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी होगा शाम 6:30 पर। ग्राम संसार ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। लोकगीत का कार्यक्रम बाजिया या नगाड़ा सुनिएगा सुबह 7:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि होगा सुबह 9:30 पर। शाम 7:45 पर पेश करेंगे गुलदस्ता। गाने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 7:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जय जवान और रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिंद महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देश

0: इत्यस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।

0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज़ जल डमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Navin Chandra Ramgulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two Prime Ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Union Minister for New and Renewable Energy Pralhad Joshi will inaugurate 2 major solar power parks in Madhya Pradesh's Neemuch and Shajapur today. Mr. Joshi, along with Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav, will launch a 500-megawatt solar park in Neemuch and a 450-megawatt solar park in Shajapur. State New and Renewable Energy Minister Rakesh Shukla will also be present at the event. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई

0: विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई।
2: आ गया बुधवा?
0: हाँ।
2: ले आया लकड़ी?

0: आई तीसी चुप्पा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
2: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटू पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
2: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात तो बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
2: अरे अरे रोने लगी, अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुप्पा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
2: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
0: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे की जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
2: हा?
1: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा। अच्छा। सुबह जल्दी उठना है।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: तो गहना लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं, तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो।
4: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे।

0: इस पेड़ को तो
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हेलो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: समझ गई है।
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोलना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान

0: केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।
5: मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टॉक्सिक हो। जहाँ जाते हो वहाँ पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सबके लिए। चुप रहो तुम। अब तुम्हें जान गई हूं तो अपनी और सबकी लाइफ में जहर नहीं घोलूंगी। हम कंपैटिबल नहीं है, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं।
6: मेरे सैयारी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया।
7: मने तेरे तो कुछ बात करनी है। जो यो मारा रिलेशनशिप है ना, मैं इसना खत्म करना चाहूँ। देख, तू काम तो हमेशा आया है, शॉपिंग का सामान ठाण में, खाने के डिब्बे ठाण में, मार्केट तो सब्जी लैण में, पर उस तक घना नुकसान कर रखा है। मन ने तेरी कोई बात नहीं सुननी। मने बेरा है तेरी लंबी उम्र है, पर इसी लंबी उम्र का क्या फायदा जो दूसरे की जिंदगी ना खतरा बन जा। तू तो गड़ता मरता भी कोन्या, धरती धरती के तना तो समुद्र के जीवा का भी जीना आराम कर रखा है। इब तना और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तेरा मेरा ब्रेकअप।
8: हम सब भी तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं।
9: हम भी।
10: हम भी।
6: मैंने ब्रेकअप कर लिया। मेरे सियारी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया।
2: तो कैसी लगी ये ब्रेकअप स्टोरी? सभी पॉलिथीन बैग से ब्रेकअप कर रहे हैं, क्या आपने किया? कपड़े के थैले का हाथ थामे, धरती के भविष्य का हाथ थामे।
4: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम बाज्याय नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं नाथीराम सौदा और रीना गुप्ता।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आपने सुना बलदेव को। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम बाजियाए नगाड़ा अब यहीं संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 8:15 बजे अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए

0: ये साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई।

0: तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते ताप

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। आज सुनिए सुबह सवेरे संध्या के साथ। साथियों, आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साइबर सुरक्षा, और चर्चा करेंगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर। कार्यक्रम का आगाज सुविचार से। अपनी ताकत पहचाने और उसी दिशा में आगे बढ़ें। आपको सबसे तेज नहीं बनना है, केवल सही दिशा में चलना है, ये कहना है मशहूर निवेशक वॉरेन बफे का। हाँ साथियों, हर खेल आपके लिए नहीं बना है, आप तो उसे चुनिए जहां अक्सर जीतते आए हैं, अर्थात अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी सीमाएं जानिए, ताकत आप खुद ब खुद पहचान लेंगे। जो काम आपको पसंद हो वही चुने और उसे पूरे दिल से करें, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे आप।

साथियों, आज है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यह विशेष दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। आज आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया। आपको उत्तर देना है 8:45 तक SMS द्वारा। फोन नंबर आप जानते ही हैं, 94-660-21-336। फोन नंबर दोबारा सुन लीजिए, 9466-02-1336। प्रश्न एक बार फिर, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया।

और साथियों अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य साइबर सुरक्षा जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा से है। ऑनलाइन खतरों और डिजिटल धोखाधड़ी से खुद को बचा के रखें और अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन अवश्य करें। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। कमजोर और बार बार उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड की बजाय किसी विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करें। दो कारक प्रमाणीकरण यानी कि 2FA सिस्टम का प्रयोग करें। अपने सभी खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत अवश्य जोड़ें और सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करते रहें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर और एंटीवायरस प्रोग्राम को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। लिंक सत्यापित करें। यदि आपके पास कोई भी अनजान लिंक आता है, मैसेज आता है, ईमेल, एसएमएस या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, बल्कि क्लिक ना करें तो बेहतर होगा। सार्वजनिक वाईफाई से बचें। असुरक्षित या सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील लेन देन जैसे बैंकिंग खरीदारी ना करें। साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग अवश्य करें। यदि आप डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार हैं तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करें। अपने उपकरणों से बॉटनेट और मैलवेयर को स्कैन करें और हटाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र का प्रयोग अवश्य करें। तो ये थी जानकारी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, क्योंकि साथियों आज का युग डिजिटल युग है और हर समय सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है आपके लिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
5: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
4: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
8: साथियों, आज अपने कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न किया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार आज ही के दिन यानी 29 जून 2007 को मनाया गया था। यह विशेष दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। सांख्यिकी और नियोजन के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर 5 जून 2007 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नीतियों और रणनीतिक योजनाओं और राष्ट्र निर्माण में आंकड़ों के महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक करना है। और अब उन साथियों के नाम जिन्होंने प्रश्न का सही जवाब दिया है। पहला सही जवाब हमारे पास आया है जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, विनोद तोमर, संजू देवी और ममता देवी का। अगला सही जवाब योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और कुरशब सिंह राहुल का। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। दरियापुर महाराष्ट्र से गजानन हेले। अगला सही जवाब है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। अगले श्रोता हैं दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और इनके साथ हैं विश्वदीप येले। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रिहान। कल्याण मुंबई से किशोर हिब्राले, सुजाता और प्रतीक हिब्राले। अगला सही जवाब है चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और वान्या सिंगरौल का, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से। गौतम कुरुक्षेत्र से। अगला सही जवाब है आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी का। भाणा ब्राह्मणा वाला नरवाणा से आप हैं मेघराज शर्मा। सांतरी से आप हैं मदन काम्बोज, प्रियांशु काम्बोज और इनके साथ हैं समृद्ध काम्बोज। अगले श्रोता हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, हियांश कुमार, आप हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से। साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, खमरिया छत्तीसगढ़ से। अगला सही जवाब है लालपुर मालो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव का। रावर कंगाल से ज्ञानभूषण शर्मा और इनके साथ हैं सोमनाथ कालिया। शेरवानी स्कूल गंजनोटवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफ्ताब अंसारी, लुबना अंसारी और अनवर मास्टर। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव और एसके पप्पी MLB रोड ग्वालियर से। सेक्टर 5

कुरुक्षेत्र से कविता चावला, भारत भूषण और दिव्यांश। अगले श्रोता हैं कोमल सिंह, तोषण सिंह, विनायक सिंह, आप हैं सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बुमला अनेजा। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी और लाडी। बीपी गौतम, सरिता गौतम, आप हैं एटा रोड गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से। टिया और कृष्णा सोलन हिमाचल से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। जगूरी से रणधीर बांगर और युगम। नागल से आप हैं इंदर राज। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से। अगला सही जवाब हमारे पास आया है डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी का। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, आप है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। रघुवीर सिंह मलिक, कमला देवी, कांवसी जिला पानीपत से। लाडवा से चांग ढींगड़ा, ईशु और एमी। विनोद मूनक, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूनक, बोरखेड़ा, पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। अगला सही जवाब है गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला योगेश, दीपक कुमारी और पूजा का। रादौर से आप हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और इनके साथ हैं साहिल पुजारा। गांव हीरावाली फजलिका पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। अगले श्रोता हैं बिहार से टब्बू वली बेलदार, उल्लाह वली बेलदार और सोनम वली बेलदार। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और इनके साथ हैं ओजस्वी यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू। अगला सही जवाब रेलवे रोड गंज टंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी का। ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये श्रोता है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर प्रश्न का उत्तर सही दिया है, अपना नाम भी लिखते तो बेहतर होता। अगला सही जवाब है गांव सांतड़ी से ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज और भव्य काम्बोज का। जयश्री और सुनील आप हैं बेंगलोर से। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, वंश व भूवेश कुमार काम्बोज। अगले श्रोता हैं प्रमोद कुमार साहू, कविता साहू, आप हैं कदुआपाड़ा, जगत सिंहपुर, उड़ीसा से। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और इनके साथ हैं मायरा सुरोशे। अगला सही जवाब है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू का। नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता यादव, सोनल प्रसाद यादव। रवि और इंदर आप हैं पश्चिम बंगाल से। अगले श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता, केशु, तासु, अर्णव, सत्यम, आप हैं पाकुड़ झारखंड से। शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर और इनके साथ हैं बेबी प्रियांशी। ग्राम नागर कोहरा से हमारे श्रोता हैं, इन्होंने सिर्फ जगह का नाम लिखा है और सही उत्तर अपना नाम नहीं लिखा है मैसेज में। सुधा मूर्ति और हली के हली आप हैं बेंगलोर से। अगला सही जवाब कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता का। गांव बांडीवाला फजलिका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया। अगले श्रोता हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल। अगला सही जवाब रविदास नगर थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से अश्विनी कराडिया, कृतिका और सूबेदार अमरनाथ। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और इनके साथ हैं सोनू भाटिया। अगला सही

जवाब है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शाहनवाज और नवेद सोहेल अब्बासी का। ललिता सिंह, भगवान सिंह, सिलाई, हिमाचल प्रदेश से। अगला सही जवाब कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती का। विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, आप हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। मागी राम सैनी, पूनम सैनी, प्रतापगढ़ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन। सेक्टर दो आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश और आशीष गौड़। नरेश मल्होत्रा, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया, खैल बाजार, पानीपत से। सेक्टर पांच सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान और इनके साथ में बेबी बॉय हिमाक्ष। अगला सही जवाब है वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, बेगम इशरत अकरम, आप हैं नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से। इनके साथ हैं अकरम हुसैन प्रिंस। अगला सही जवाब भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार का। राजेश कुमार मेहरा क्लासिक रेडियो श्रोता सिंह बकानी खुर झालावाड़ राजस्थान से। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, ग्राम लोहिड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। अगला सही जवाब हमारे पास आया यवतमाल विदर महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद खड़से का। गजराज पन्नू, कार्तिकेय पन्नू और रजनीश आप हैं गांव फुरलक जिला करनाल। पैतावास कला जिला चरखी दादरी हरियाणा से उमेश सागवान। मेन मार्केट सरोई ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, संजना नामदेव और इनके साथ हैं अनन्या नामदेव। आरसी कामड़े और करुणा कामड़े आप हैं जवाहर नगर तुर्क से। दिलदार मेरी ज्योति और जानवी कुर्मा जांच की चांपा छत्तीसगढ़ से। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और रचिता बिटिया। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश रायगर्ग, अंजना रानीगर्ग और विकास कोयल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर। बन वगैरह जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं योगेश सारवा और इनके साथ हैं आशा सारवा। अगला सही जवाब है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव का, आप हैं उगाला अंबाला हरियाणा से। गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा। हांसी हिसार से रामधारी अवाना, ओजस और अनाया। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रश्न का सही जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।

साथियों, आज है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 29 जून को यानी आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 में घोषित किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन क्षेत्रों के महत्व को उजागर करना है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के लगभग 40% भाग को कवर करते हैं, लेकिन ये दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता का घर है। इन क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की अधिकांश आबादी और उसके 2/3 बच्चे इन्हीं क्षेत्रों में निवास करेंगे। इन क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की अधिक संख्या और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसी प्रमुख चुनौतियां शामिल है। इसीलिए इस दिवस को मनाने की सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग जागरूक रहें और एक दूसरे की

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: मंगल भवन मंगल
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

साथियों, आज है संत कबीर जयंती। आप सभी को संत कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संत कबीर का आविर्भाव विक्रमी संवत 1456 और ईस्वी सन 1398 को ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार यानी आज ही के दिन हुआ था। इसी दिन काशी के जुलाहे नीरू अपनी नवविवाहित नीमा का गौना कराकर अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में नीमा को प्यास लगी। रास्ते में लहर तारा तालाब था और नीमा पानी पीने के लिए तालाब में नीचे उतरी और पानी पीने ही लगी थी कि वहां कमल दल के गुच्छ पर किसी शिशु के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। नीरू और नीमा अपनी सहमति से इस बालक को घर ले गए, जो बाद में कबीर संत हुए। जहां कबीर संत पाए गए उसी स्थान को प्रकट स्थली कहा जाता है और वही प्रकट स्थली मंदिर भी बनाया गया है। इसी मंदिर में देश विदेश से कबीरपंथी व अन्य धर्मों के लोग आकर कबीर जी का आशीर्वाद लेते हैं। संत कबीर का लालन पालन वही हुआ। कबीर जी अपने माता पिता के साथ कपड़ा बुनने के कार्य में हाथ बटाने लगे और इस कार्य में वे निपुण भी हो गए। उनका झुकाव परमार्थ की ओर था और उनमें गूढ़ तत्वों को समझकर उनको गहराई से जानने और उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता थी उनमें। संत कबीर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त अन्याय एवं कुरीतियों को समाप्त करने में लगा दिया और अपने इरादों पर टटे रहे और लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। संत कबीर की साखियां अज्ञानता को दूर कर सत्य का साक्षात्कार कराती हैं और साखी के बिना हम अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते हैं। जीवन का सच्चा उपदेश है कबीर जी की साखियां। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। सत्य के समान संसार में कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिनके हृदय में सत्य का निवास है उनके हृदय में ईश्वर स्वयं वास करते हैं।

साथियों, आज है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि। देश के वीर सपूत को शत शत नमन। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महाराजा महासिंह के घर हुआ। बचपन में चेचक के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, किंतु इससे उनके आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष 1792 में पिता के निधन के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शासन की जिम्मेदारी संभाली। 12 अप्रैल 1801 को उन्होंने महाराजा की उपाधि ग्रहण की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय पंजाब अनेक सिख मिसलों, अफगान सरदारों में विभाजित था। रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, सैन्य क्षमता और कूटनीति के बल पर इन बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट कर एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और कांगड़ा सहित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित किया। उनके नेतृत्व में पंजाब उत्तर भारत का सबसे सशक्त राज्य बन गया। महाराजा रणजीत सिंह केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय, उदार और धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्म के लोगों को समान सम्मान और अवसर प्राप्त थे। उनका शासनकाल पंजाब का स्वर्णिम युग माना जाता है। वह केवल एक विजेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सुशासन के आदर्श प्रतीक थे। उनकी वीरता, उदारता और राष्ट्र निर्माण की भावना आज भी प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देती है। ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन।

साथियों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइए। हमारा ईमेल पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com।

0: अभी आपने सुना जगजीत सिंह को, और अब सुनिए ये संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
4: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
3: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
5: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
6: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
5: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
6: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
7: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
3: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
4: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
3: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।

अभी आपने सुना पंकज उदास को। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं, अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं, ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा, तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। साथियों, आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे क्या है हथनी कुंड बैराज, और जानकारी के तहत आपसे विचार साझा करेंगे तराई का प्रथम युद्ध 1191 के बारे में। श्रोताओं, हमें खेद है कि फोन लाइन में खराबी की वजह से आज आपके फोन कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, तो सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं अब जानिए तराई के प्रथम युद्ध के बारे में। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हरियाणा की तराबड़ी, जिसे पहले तराई के नाम से जाना जाता था, इस मैदान में लड़ा गया था। यह महान चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गोरी ने पंजाब और बटिंडा के रणनीतिक किलों पर कब्जा कर लिया था, जिससे वह पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं पर पहुंच गया था। इस युद्ध का मूल कारण यही था, मोहम्मद गोरी का पंजाब और बटिंडा में प्रवेश करना। पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में शानदार जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाने के बावजूद जीवन दान दे दिया, जिसे बाद में इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी गई। और यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान को भी अपने जान बाद में गंवानी पड़ी थी। परंतु पृथ्वीराज चौहान जी की इस शानदार जीत को हम आज भी याद करते हैं और ऐसी वीर योद्धा को, वीर शासक को शत शत नमन करते हैं।

0: अनमोल है। इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
1: 8708903436।
2: और साथियों अब बात करते हैं हथनी कुंड बैराज के बारे में। आज जानिए हथनी कुंड बैराज क्या है, इसका निर्माण और उद्देश्य। हथनी कुंड भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट का बांध है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 और जून 1999 के बीच किया गया था। इसने 3 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित ताजे वाला बांध का स्थान लिया, जिसका निर्माण 1873 में हुआ था। यह बांध पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों के पानी को जोड़ता है। बांध द्वारा निर्मित छोटा जलाशय विभिन्न प्रजातियों के जल पक्षियों के लिए आर्द्र भूमि के रूप में भी कार्य करता है। ताजे वाला बैराज को बदलने की योजना 1970 के दशक में शुरुआत से ही चल रही थी, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच जुलाई 1994 तक कोई समझौता नहीं हुआ था। यह बैराज 360 मीटर लंबा है और इसके स्पिलवे में 10 मुख्य बाढ़ द्वार हैं। साथ ही इसके दाहिनी ओर 5 और बाईं ओर 3 अंडर स्लोइस हैं। बैराज का अधिकतम डिस्चार्ज 28,200 मीटर प्रति सेकंड है। इस बैराज के कारण नदी की 90% मात्रा को मोड़ दिया जाता है, जिसमें मूल जल प्रवाह में केवल 10% ही बचता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यहाँ से पानी पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में छोड़ा जाता है, जिससे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ मिलता है। मानसून के दौरान

0: जब यमुना में जल स्तर बढ़ता है तो अतिरिक्त पानी इसी बैराज से छोड़ा जाता है, इसलिए दिल्ली और यमुना के निचली क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए यह बैराज अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थी जानकारी हथनी कुंड बैराज के बारे में। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत, पहले ये संदेश।
1: अब दर्द नहीं जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

साथियों, हम अक्सर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। प्रदूषण मुक्त हो सारी धरती, ऐसा पर्यावरण बनाना चाहते हैं, परंतु अधूरी जानकारी के कारण अक्सर उपयोगी वस्तुओं को भी कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कचरा निष्पादन की। हालांकि सही ज्ञान और थोड़े से प्रयास से कचरे के इस ढेर को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथियों, हमारे घर से रोज ढेर सारा कचरा निकलता है। अपनी जिम्मेदारी हम सिर्फ उसे कचरा गाड़ी तक पहुंचाने की समझते हैं, लेकिन कभी आपने उसके आगे की प्रक्रिया जानने की कोशिश की है? हम में से अमूमन लोग प्रकृति प्रेमी हैं, सभी अपने घरों में पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, तो क्यों ना कचरे के आगे के प्रबंधन को आसान बनाने की थोड़ी सी तैयारी हम खुद घर पर ही कर लें। इस तरह हम अपनी प्रकृति के लिए अपना दायित्व निभा सकते हैं और साथ ही कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। थैली भरकर कचरा निकलने की मुख्य वजह है हमारी आदतें और अनजाने में होने वाली कुछ गलतियां। अक्सर लोग आलस और जानकारी की कमी के कारण सभी प्रकार के कचरे को एक ही थैले में भर देते हैं। आप भी अक्सर करते होंगे, तो कृपया करके ऐसा न करें। पुराने कपड़े, टूटे कांच, खाली बोतलें और प्लास्टिक के पैकेट के बारे में लगता है कि ये तो सूखा कचरा है, तो बस सब कुछ एक साथ मिलकर और एक लिफाफे या पॉलिथीन में डालकर कचरा गाड़ी में फेंक दीजिए। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे घरों से निकलने वाले कचरे का लगभग 50% हिस्सा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग की। किसी अन्य तरह से उपयोग में लाया जा सकता है और फिर उसे बेचकर लाभ भी कमाया जा सकता है। साथियों, चर्चा जारी रखेंगे। प्रदूषण

समर्थक आपको नहीं बनने देंगे, आप पर्यावरण के संरक्षक हैं। तो चर्चा जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, हम बात कर रहे हैं कचरा प्रबंधन की। कचरा प्रबंधन हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर अपनी फेंक देने की संस्कृति को संभालने और संवारने में बदलना है। ये छोटी सी पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकती है। आपको 3 R's का पालन करना होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कम से कम सामान खरीदें जितनी जरूरत हो, बस उतना ही। जिन चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें उपयोग में लाएं और रिसाइकल करने योग्य वस्तुएं सही केंद्र तक पहुंचाएं। और साथियों, घर पर ही आप खाद भी बना सकते हैं। रसोई के गीले कचरे जैसे फल सब्जियों के छिलके, इनसे घर के पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। इस तरह बागवानी और कचरे का प्रबंधन करके आप पर्यावरण को दोहरा लाभ दे सकते हैं। और अब बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की। कई वेबसाइट्स और एप्स जो आपके घर से पुराना फर्नीचर, कागज या ई वेस्ट खरीदते हैं, कई शहरों में ऐसी दुकानें भी है जो रिसाइकल करने योग्य सामान खरीदती है, जहां जाकर आप इनकी जगह अन्य चीजें ले सकते हैं। और पुनर्चक्रण के लिए यानी रिसाइकलिंग के लिए तैयार करें कचरा। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे दूध के पैकेट की। प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल पुनर्चक्रण के लिए देरी से पहले पानी से धोएं और सुखा लें, क्योंकि जूठन लगा हुआ प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाता। अब इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे? कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए अलग अलग बैग रखें। पुराने सेल जो खराब हो जाते हैं, कई बार घड़ियों में लगे हुए या आपके चार्जर, खराब मोबाइल, सामान्य कचरे में, इन सबको कभी मत मिलाइए। इन्हें अलग रखिए और ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर ही दे दीजिए। सुई, ब्लेड और कांच को कागज में लपेट कर दें ताकि इनसे किसी को चोट ना पहुंचे। कांच की वस्तु पर मोटे कागज या कार्डबोर्ड लपेटें व उस पर, इसमें कांच है, लिख भी सकते हैं आप। वैसे इन कामों में आपको समय तो लग सकता है, पर बचाव हो जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं। पुरानी जीन्स या बैग या फिर ड्रम से टेबल आदि जैसे कुछ क्राफ्ट भी बनाए जा सकते हैं और अपनी सोसाइटी या मोहल्ले में साझा कलेक्शन पॉइंट भी बना सकते हैं आप, जहां से जरूरतमंद लोग इसे ले सकती हैं। जो आपके काम की नहीं है, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो इन छोटे छोटे उपायों से हम पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं एक पर्यावरण संरक्षण पर छोटी सी कविता। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, प्रदूषण मुक्त हो सारी धरती, ऐसा पर्यावरण बनाए। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, पेड़ पौधों से हमें मिलती है ऊर्जा और मिलते फल फूल, थोड़े से लालच में आकर इनको काटने की करते भूल। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, हरियाली धरती का है श्रृंगार, पेड़ों की श्रृंखला बनती है हार, स्वार्थ को छोड़कर मानव, इनसे उचित करो व्यवहार। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, जल थल नभ है सब परेशान, प्रदूषण बढ़ा रहा अपनी पहचान, व्यसन मुक्त हो सारा जहां, धरती माँ की बनी रहे शान, युवा शक्ति को देना होगा अपने तन मन का बलिदान। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए। हाँ साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण जरूर होगा, जिससे हमारे अस्तित्व का खतरा नहीं होगा और हम सब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे।

साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि जिंदगी क्या है, तो सभी का जवाब अलग अलग होगा। सवाल चाहे दार्शनिक अंदाज में हो तो जवाब लोग ये देंगे कि जिंदगी पानी का बुलबुला है। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी एक पहेली है, कई लोगों के लिए जिंदगी गणित है। लेकिन साथियों, व्यवहारिक रूप से देखें तो जिंदगी आपसी समझ की गुल्लक है। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब बुजुर्ग अपने बच्चों से अलग नहीं रह पाते। ऐसे में जरूरी है आपसी समझ। बच्चों के साथ ही माँ बाप को भी यह समझने की जरूरत है कि उम्र के हर पड़ाव पर थोड़े से स्पेस की जरूरत सभी को होती है। माँ बाप ये सोच लेते हैं कि वह बच्चों और पोते पोतियों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, लेकिन उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी अपनी जिंदगी है। बच्चों के साथ साथ उन्हें भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। कई बार बच्चों की व्यस्तताएं बुजुर्गों को नकारात्मक बना देती है। उन्हें लगने लगता है कि बच्चे उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन जज्बातों से बाहर निकले, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और अपने लिए खुद ही रास्ता चुने, कुछ नया करें, अपने जीवन में बदलाव लाए। देखिए साथियों, सीखने की गुंजाइश तो जिंदगी के हर मोड़ पर होती है और हर पड़ाव पर आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हालांकि कुछ बुजुर्ग अपने जीवन के स्वर्णिम काल में अपना जीवन अपने ढंग से गुजारना पसंद करने लगे हैं। कुछ रिटायर्ड लोगों की बात करें तो वो अपने अनुभव की वजह से समय काटने के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, जिससे वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। वे स्वेच्छा से अपना काम चुनते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उसे पूरा भी करते हैं, मतलब एक टारगेट लेके चलते हैं। अपनी स्वतंत्रता और सम्मान अब उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे हैं। वे सक्रिय रहते हुए संसार से जाना चाहते हैं, यानी जब तक है हमें अपना समय व्यस्त रहते हुए अच्छे कार्यों में सकारात्मक सोच के साथ बिताना चाहिए। निष्क्रिय रहकर एक कोने में पड़े उपेक्षित बूढ़ों की तरह नहीं। कुछ लोग अब भी अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। यह आपका अधिकार है, आपकी जिंदगी है, तो अपने हिसाब से आप जीना सीखिए। खुद को खुश रखना आपकी आदत होनी चाहिए और दूसरों पर निर्भरता भी कम होनी चाहिए। कभी भी नकारात्मक विचार जब भी मन में आए, मत आने दीजिए और आप सकारात्मक रहकर आशावादी सोच के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारिए।

साथियों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइए। हमारा ईमेल पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय अब यहीं संपन्न होता है। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को ही अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में ये अगला गीत।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंगतरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में यह अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ अभी तो जी ले। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जी ले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे, बजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और इन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बेख्याल हो कहीं गुनी चूलिया किसी ने,
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: वाली आए जित मेरी याद आए जब चाहे चली आए जित मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 400
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एन हनी गोंसाल्विस
2: रियली
0: राइट राइट

0: तो जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्स्टापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
0: Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo.

याद रहे, अरे याद रहे, अभी याद रहे, बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे सच्चा प्यार।

0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonta।

0: कोई किस्मत वाली, हर जिस मेरी याद आए जब चाहे चलिया, जिस मेरी याद आए जब चाहे चलिया, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म आन मिलो सजना। सुनिए

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी हैं वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा ले किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता

0: पदक प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगी। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। आज संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर दास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों पहले जब समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जात पात जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब संत कबीर ने अपनी वाणी और कर्म से समाज को वैचारिक अंधकार से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को कबीर जयंती की बधाई देते हुए संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के नियमों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। डॉ कृष्ण मिड्ढा संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान समाज के द्वारा रखी गई मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ मिड्ढा ने कहा कि पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने संत कबीर दास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संतों के वचनों को बिना किसी फेरबदल के उनके मूल रूप में मानना ही जीवन की हर उलझन और गुत्थी का वास्तविक समाधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल भवनों को गिराकर नए भवनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हों, साथ ही ये लंबवत रूप में हों, बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी स्कूल के खस्ताहाल भवन में बच्चों की कक्षा न लगाने की सख्त हिदायत दी और कहा कि उन्हें तब तक आसपास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने नए स्कूल भवनों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लुधियाना में लोगों के बीच बैठकर सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सरकार की नीतियों को नागरिकों तक पहुंचाना, उनकी प्रतिक्रिया जानना महत्वपूर्ण पहलू है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं। देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल, समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए। धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो

काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं, साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपने दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल की नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर, तेरी पुकार

पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत ने प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने या दिल धड़कने का सबब याद आया, जो दिल को छू कर निकला दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

चाचे चिक चिक चिक चा सच हुए सपने काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें। और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रही है कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइन्स बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें।

तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समझ जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी और साथी कह रही कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारी और साथी कह रही कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की, काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी।

बार एक साथी कहने कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है, और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है, और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है, जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

0: on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा एक रिपोर्ट
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं ये सम्मान देश की आतंकवाद उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं साथ ही विमानन समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य शिक्षा समता निर्माण समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया यात्रा के दौरान UPI स्वास्थ्य कृषि नौवहन अंतरिक्ष सहयोग प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता

0: ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता

0: राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा

0: की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
3: हम थे, वो थी, वो थी, हम थे।

0: करता हूँ दम तो लेने दो। हा हा हा हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: हमके वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अन्ने अन्ने अन्ने प्यार हो गया,
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: खींचा मैंने खींचा हम थे मोती और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाज है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: cat cat माने बिल्ली।
5: rat rat माने चूहा।
4: cat cat माने चूहा। अरे दिल है।

टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ,

0: जियो एटी गोट, गोट माने बकरी, एल आई ओ एन लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: एम मेड मैड, मैड माने पागल, बी ओ वाई बॉय, बॉय माने लड़का।

0: कहीं जहां में हसी न होगा कोई हमसा भी।
1: ए नोज़ नोज़ नोज़ माने नाक, CROW क्रो क्रो माने कवारे, मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
0: CAT कैट, कैट माने माऊ, RAT रैट, रैट माने छू, अरे दिल है

0: जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया।
1: यहाँ से करो ये तो जब करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया।
1: यहाँ से करो ये तो जब करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: बीएडी बैड बैड माने बुरा, बीयूटी बट बट माने लेकिन अरे दिल है तेरे पंजे में।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हम से न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम से न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सखी सहेली सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो कहीं कहीं पे देखो

0: बारिश अभी भी नहीं हुई है तो वो लोग गर्मी से परेशान है, तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हरे भरे रहे। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारे हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की, और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह से। बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं, तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
0: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती है उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना ना
1: जी। बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: देखिए तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं, और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं जो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहां पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर जी। तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर,

अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज

0: की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
1: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
2: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
1: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
0: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
0: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
1: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
2: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
2: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए?
1: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
2: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहां पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
1: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था।

0: ड्रॉअर में से क्यों निकाला इस कागज को?
1: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
2: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
3: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
2: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
3: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
4: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे।
2: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
3: मक्कार का मुंह काला।
2: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आंच की कसर, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
1: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे
0: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार के इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनके जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को

0: आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है। कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ है, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं। तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हमसे। तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो निहल, उस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और निहल, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को से क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं, बस उसको आप उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद भी होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उसे जल्दी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
0: ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदत और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं, एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो ही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती है, समय लगता है, रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही है और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है, तो कभी कभी आने में तो इंसान दो तीन दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहाँ रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो
1: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए।

0: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें नहीं हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
1: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
0: और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है।
0: विवाह को अच्छी तरह से बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे,
1: तो चलो पहले गाना सुना देते।
0: बिल्कुल।

0: तो देखो
1: बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए। और तलने के लिए तेल और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पीसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूनें जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मानो बड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है, फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें,

0: गरम आलू की सब्जी तैयार है, कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं,
1: बिल्कुल
0: आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार

0: या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है. तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द. एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए.
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है. और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं. घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था. आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं. क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज निकलती है. स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है. कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है. तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है. ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है. तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है. तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स.
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें. और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है. अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है।

0: तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
1: जी,
0: तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना,
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं हम, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। पर अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको

0: से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती है, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी, और क्या
0: काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे भी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करते हैं, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विदिन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं हो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम detect करते हैं कि actually acid ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। There are many other ways to detect the esophagus.
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो। माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारे शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल,
1: या फिर जो लोग नहीं

0: देखते हैं उन्हें भी होता है तो, हाँ,
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी के जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारी है, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
0: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी जी और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या?
1: ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको

0: लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि यू वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: सब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा ये तेल अच्छा है ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने

0: पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आप को कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
1: और
0: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो भी इजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होंगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक

0: बनाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हमारा नियमित कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी की।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम अन्नदाता प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00।

युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर और शाम 5:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान लेकर हम आएंगे शाम 7:30 पर और गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे और आपकी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10 बजे। शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने।

हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए और छाया गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 जून 2026 को निर्मला देवी पत्नी इंद्रराज ने लाडवा थाने में दरख्वास्त दी कि उनकी पुत्री एकता, जिसकी उम्र 19 वर्ष जो कि दिनांक 23 जून 2026 को घर से बगैर बताए कहीं चली गई परंतु आज तक घर वापस नहीं आई, जिसने चॉकलेट रंग का फ्रॉक व ट्राउजर पहना है जिसका रंग गोरा, उम्र 19 साल है। अगर इसके संबंध में कहीं आपको कोई सूचना है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 7056700815। एक अन्य संपर्क सूत्र है 7056700115 और पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क सूत्र नोट कीजिए 0174422100। सूचना समाप्त हुई।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिष माँ की ओर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गाने नए पुराने। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके लिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को लेकर जिसमें शायद आप भी मुंतजर रहते होंगे, इंतजार रहता होगा आपको भी कि हाँ ये जो कॉम्बिनेशन रहता है कि कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीत, तो आज की फहरिस्त में जो पहला गीत कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है वो है फिल्म गुरु से। आवाजें हैं मरियम टोलर, चिन्मय श्रीपदा और कीर्ति सगाथिया की। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म सीआईडी 909 से, आशा भोसले की आवाज, शिवान रिजवी का लिखा गीत और ओपी नैयर का है संगीत।

अगला गीत है फिल्म थ्री इडियट से, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने।

और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है फिल्म 10 लाख से मोहम्मद रफी की आवाज़, प्रेम धवन का गीत है और संगीत दिया है रवि ने।

0: लग जागले।
1: और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं सुनिधि चौहान और साथियों को। फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, गीत को लिखा है राहत इंदौरी और अब्बास टायरवाला ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: Sinclair.
1: और इसी प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम से ज्योतिष्मा को दें इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष माँ की ओर से। और आज दोस्तों ये कार्यक्रम छोटा सा ही रहेगा, 15 मिनट का कार्यक्रम है और आज है सोमवार और आपकी फरमाइशें हम तक पहुंची हैं, आपके मनपसंद गीत, वो खूबसूरत गीत जो आप सुनना चाहते हैं। तो आज बामुश्किल हम दो ही गीत आपको सुनवा पाएंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, टाइम को ज़ाया ना करते हुए आपके जो संदेश हैं उनको पढ़ते हैं और आपकी पसंद के जो सुर हैं उनको आवाज़ देते हैं, उनकी देखते हैं क्या ही आपकी फरमाइश पहुंची है हम तक। तो पहले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं, मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी बाई बागरी और लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के थे जो पहले नाम हमने पढ़े। और अगला जो मैसेज है वो है दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से फरमाइश पहुंची है डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, बीबी, आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। और अगले इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा, गांव कलाना, भादा, हनुमानगढ़, राजस्थान से फरमाइश आई है। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जय श्री महित्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टौल और पी बी कुल थे। और आप सबने सुनना चाहा है फिल्म तीसरी आंख का गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।

0: अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
6: और आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना से वाहिद रूमानी, मोहम्मद जमीर, फसी, जुनैद, जुबैर, मुकरम, नोमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। चकला बाजार सवाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता पप्पू, मह खुशदिल, सुनीता आरजू, पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। गांव महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े और स्वप्निल। और आप सब ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को, फिल्म है कटी पतंग, आनंद बख्शी की शब्द रचना और RD बर्मन का है संगीत।

और दोस्तों इसी प्रस्तुति के साथ इजाजत दीजिए आज के युववाणी कार्यक्रम से। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज आपने सुनी युवा फरमाइश FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम डॉक्टर जैन हॉस्पिटल की तरफ से।

0: डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहन नगर कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि जैन जो कि डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहन नगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रुचि जैन सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं।
2: आज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग से संबंधित हर प्रकार का इलाज, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अनुभवी डॉक्टर्स और फुली ट्रेन्ड नर्सेज एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ 24 घंटे अवेलेबल है। हमारे हॉस्पिटल में प्री लेबर रूम, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक ICU व प्राइवेट रूम और जनरल वार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जाँच, जिसमें कि प्रसव से पहले की जाँच और 9 महीने तक महिलाओं की खान पान का ध्यान, उनको दवाइयाँ किस प्रकार की दी जानी चाहिए, उन्हें किस प्रकार की एक्सरसाइज या व्यायाम बताया जाता है जिससे कि वह अपनी प्रेगनेंसी का टाइम एक अच्छे तरीके से निकाल सकें और एक सफल डिलीवरी का अनुभव ले सकें और साथ के साथ एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो। नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन ऑपरेशन की भी सुविधा 24 घंटे अवेलेबल है। इसके अलावा स्त्री रोग से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे कि गर्भाशय की गांठ, अंडेदानी की गांठ या PCOD की समस्या या मासिक धर्म से जुड़ी अन्य समस्याएं, जिसमें कि मासिक धर्म का आगे या पीछे हो जाना या प्रभावित हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी सारी समस्याएं, इन सभी बीमारियों का इलाज भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। किसी किसी रोग में यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो यह ऑपरेशन भी दूरबीन के द्वारा यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है व रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। इसके अलावा हमारे अस्पताल में परिवार नियोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे अस्पताल को फुल NABH का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पर यह फुली NABH की तरह अवेलेबल हॉस्पिटल है और साथ के साथ अन्य कई प्राइवेट TPA कंपनीज के साथ भी हमारा टाइप है जिससे कि कैशलेस सुविधा मिलती है।
1: डॉक्टर रुचि जैन, पेनलेस डिलीवरी क्या होती है?
2: पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी एक मॉडर्न टेक्निक है नॉर्मल डिलीवरी की, जिसमें कि मरीजों को पीड़ा रहित डिलीवरी का, प्रसव का अनुभव दिया जाता है। यह एक प्रकार का एनेस्थीसिया है जिसको कि मेडिकल टर्म्स में एपिड्यूरल एनल्जीसिया बोलते हैं। एक विशेष टीका महिला की रीढ़ की हड्डी के सुपरफिशियल स्पेस में स्किन के थोड़ा नीचे लगाया जाता है और इस इंजेक्शन में एक विशेष दवा दी जाती है जिससे कि मरीज को दर्द का एहसास नहीं होता, दर्द का अनुभव नहीं होता। यानी कि जो गर्भावस्था के टाइम जब लेबर होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, यदि वह किसी महिला के लिए असहनीय है तो वह पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन ले सकती है। जब यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो महिला को गर्भाशय में सिकुड़न यानी कॉन्ट्रैक्शन तो होते रहते हैं लेकिन महिला उसको फील नहीं करती, एहसास नहीं कर सकती, इसलिए वह नॉर्मल डिलीवरी भी बिना दर्द सहे करा सकती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म ले सकती है। यह इंजेक्शन माँ और बच्चे दोनों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता और माँ को भी बाद में किसी प्रकार के कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। जैसा कि कुछ पेशेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इसके बाद हमें हमेशा के लिए कमर दर्द रहेगा, तो ऐसा नहीं है। कमर दर्द का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस इंजेक्शन का, बच्चे के ऊपर इस इंजेक्शन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, बच्चे के लिए भी यह टीका बिल्कुल सुरक्षित है। इस टीके को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आप लेबर में होती हैं

0: एंड डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, तो कुछ जांच के दौरान जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे के हेड का स्टेशन क्या है, गर्भाशय के मुंह का डायलेटेशन यानी कि सर्विक्स का जो माउथ है वो कितना ओपन हो गया है, यह सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस टीके के उपयुक्त हैं या नहीं। तो उन्हीं पेशेंट्स में ये टीका लगाया जा सकता है जिन पेशेंट्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं।
1: अब आप हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताइए।
0: लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन के द्वारा की जाने वाली सर्जरी, आमतौर पे जो नॉर्मल सर्जरी होती है जैसे टांको वाली सर्जरी या हाथ का ऑपरेशन कहा जाता है, इसमें पेट के निचले हिस्से पे एक बड़ा सा कट लगता है और उसमें जब ऑपरेशन के बाद कई तरह के टांके लगते हैं जिससे कि मरीज को दर्द का अनुभव ज्यादा होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उन टांकों से बचने का एक तरीका है और यह सर्जरी केवल एक या दो या तीन छिद्रों के द्वारा पेट के अंदर दूरबीन डाल के की जाती है और यह बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसको एक तरह से की होल सर्जरी भी कहा जाता है। एक दूरबीन होती है और उस दूरबीन के जरिए पतले पतले इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर डाल के ऑपरेशन किया जाता है। आमतौर पे सभी सर्जरीज जैसे कि बच्चेदानी की गांठ यानी फाइब्रॉइड का इलाज या बच्चेदानी रिमूवल का ऑपरेशन या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी या अपेंडिक्स या हर्निया, इस प्रकार की कई सर्जरीज, पथरी की सर्जरी दूरबीन के द्वारा संभव है। दूरबीन के द्वारा सर्जरी करने में मरीज को कोई दर्द नहीं होता, ये फुल एनेस्थीजिया यानी कि पूर्ण बेहोशी में की जाती है। मरीज की रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है और मरीज जल्दी चलने फिरने के योग्य हो जाता है, मरीज की अस्पताल से जल्दी छुट्टी हो सकती है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा भी इस ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद नहीं होता और यह मरीज को ज़्यादा सुखद अनुभव देती है और सेफ है।
1: आप ये बताइए कि क्या अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर का टीका उपलब्ध है और यह किन्हें लगाया जाता है?
0: सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो इंडिया में, भारतवर्ष में महिलाओं में बहुत तेजी से पाई जा रही है। यहाँ तक कि हर 8 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, इसलिए सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए इवन भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और हमारे अस्पताल में भी इसको, इस रोग से बचने का टीका लगाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के कारणों के बारे में पता लगाया जा चुका है और यह पाया गया है रिसर्च के बाद कि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है। इस वायरस का नाम है HPV। तो इस वायरस से बचने के लिए एक टीका बनाया गया है जो कि इस वायरस का इन्फेक्शन नहीं होने देता यानी कि बचाव करता है। यह टीका सबसे उपयुक्त एज इस टीके को लगाने की है 9 से 15 वर्ष की लड़कियां, युवा लड़कियां, और अब भारतवर्ष में यह टीका लड़कियों और लड़कों दोनों को लगाने के लिए परमिशन है, यानी 9 से 15 साल की उम्र में लड़की व लड़का दोनों को ही यह टीका लगाया जा सकता है, क्योंकि यह जो वायरस है HPV वायरस है यह यौन संबंधों के द्वारा संक्रमण से फैलती है, इसलिए लड़कों व लड़की दोनों को यह टीका लगा के इस प्रकार के इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है और आगे कैंसर के खतरे को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाला टीका आइडियली 9 से 15 साल की लड़कियों को लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आपने यह टीका उस एज में नहीं लगवाया है, आपके घर में कोई ऐसी बच्ची है जिसका कि 9 से 15 साल का वर्ष का टाइम निकल चुका है, तो यह टीका बाद में भी लगाया जा सकता है। 16 साल से बड़ी लड़कियों को भी लगाया जा सकता है, परंतु उसकी 3 डोजेज होती हैं, 9 से 15 साल में 2 डोजेज व 16 साल से बड़ी उम्र की लड़कियों को 3 डोजेज में लगाया जाता है। उस टीके को लगवा कर वे अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकती हैं, सर्वाइकल कैंसर के खतरे से हर हालत में बचा सकती हैं। जो ये HPV वायरस है ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा 8-9 अन्य प्रकार के कैंसरों का भी कारण पाया गया है, इसलिए यह टीका लड़की व लड़के दोनों को लगवाना चाहिए।
1: डॉक्टर रुचि जैन, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है DR जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम डॉक्टर जैन हॉस्पिटल की तरफ से, और अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म का नाम है जुल्म की पुकार, संगीत है सोनिक ओमिका और गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, गायक हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी।

एफएम 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रेलवे की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: Major General Gurpreet Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है।

सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी बिल्कुल, आपका अपना आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। मुझे पता है बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी उंगलियां थरथरा रही हैं, जल्दी से आप हमें मैसेजेस भेजें। लेकिन किस टॉपिक पर भेजेंगे, जी हाँ बता दूंगी मैं आपको जल्दी किस बात की। पहले गाना तो सुनिए, कैसी शाम है ये।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। आज छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर को मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत बताया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक बैठक में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। इस समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे रेणुका, किशाऊ और बार बांध परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के अनुसार पूरा सहयोग करेगा।
2: जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये एमयूस है। जो है पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा। हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। आदरणीय सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई है और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ जहाँ भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृष्णमूर्ति के बीच आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में हरियाणा के किसानों, उद्यमियों और युवा शक्ति के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कौशल विकास और तकनीक आधारित आर्थिक विकास को गति देने पर सहमति बनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। आज छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही से नगर कीर्तन

0: निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के साथ नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा, समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा हजारों की संख्या में संगत मौजूद रही। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा, शीतल जल और लंगर की सेवा कर संगत का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि कुरुक्षेत्र ऐसी पवित्र धर्म नगरी है जहां सिखों के सभी 10 गुरु साहिबान पधारे हैं।
1: ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਬ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ।
0: पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सिख श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कहा कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने उत्तराखंड सरकार से बातचीत की और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद विवाद का समाधान कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीरदास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं, ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने आज कबीर जयंती पर लोगों से संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के मार्ग का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि समाज द्वारा पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री समक्ष रखेंगे। मीडिया से बातचीत में विधानसभा उपाध्यक्ष ने संत कबीर दास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। संत कबीर दास जी के प्रकट दिवस पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के सोहना रोड स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सदगुरु कबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि संत कबीर जी ने दोहे और साखियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके विचार मानवता, सत्य, प्रेम और समानता का संदेश देते हैं। संत कबीर ने समाज को बताया कि सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं।
2: जिस प्रकार सदगुरु कबीर जी ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, उस पर आज लोग चलकर समाज को सकारात्मक भाव से आगे ले जा रहे हैं। आप सबका भाईचारा, एकता में जुटने का संदेश जो इन्होंने दिया है, हम उस पर काम।
0: आज अंबाला में केंद्रीय विद्यालय संगठन के गुरुग्राम संभाग की क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद सहायक आयुक्त दीदार सिंह चहल ने बताया कि प्रतियोगिता में 64 केंद्रीय विद्यालयों के 554 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
3: हमारा रीजनल चल रहा है, ये बॉयज का है और 554 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 90 के करीब स्कॉट्स हैं। रीजनल ऑफिस गुरुग्राम में 37 विद्यालय हैं वो हरियाणा के हैं और 27 केंद्रीय विद्यालय हिमाचल के हैं। इन्हीं 64 विद्यालयों से हमारे यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं और 15 गेम यहाँ पे हो रहे हैं। अभी रीजनल स्पोर्ट्स मीट के बाद जब ये बच्चे सिलेक्ट होंगे और बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे, ये बच्चे केवीएस नेशनल्स के लिए जाएंगे।
0: प्रतियोगिता के समापन पर केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग में उपायुक्त चंद्रशेखर आजाद ने विभिन्न खेलों के विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

0: जापान के फुकुओका में तकनीकी क्षेत्र की 80% कंपनियों में तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने के लिए जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा सरकार से युवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अनुरोध किया है। इससे अगले 5 साल में हरियाणा के 50,000 युवाओं को फुकुओका प्रीफेक्चर में रोजगार उपलब्ध होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉ. ऋचा त्रिवेदी की।
2: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 और उससे आगे की व्याख्या सुनेंगे।

मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयी। ये पदार्थ सात्विक है, राजस है अथवा तामस है, यह विवेक तथा उन पदार्थों का क्या ठीक उपयोग है, यह सब ज्ञान मुझसे ही संसार को मिला है, ऐसा उनके संबंध में जानना, किंतु मैं उनमें फंसा नहीं हूँ, न उनके आश्रय में हूँ, वे मेरे वश में तथा मेरे आश्रय में हैं, जो सात्विक राजस तथा तामस भाव है। भाव अर्थात मनुष्य की प्रकृति, किसी की सात्विक प्रकृति होती है सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली, किसी की राजस रजोगुण से उत्पन्न होने वाली, किसी की तामस अर्थात तमोगुण से उत्पन्न होने वाली प्रकृति है। ये सब केवल मुझसे ही प्रकट होते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। अर्थात सत्व रज तम परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के आश्रय से रहते हैं, उसके आश्रय से टिके हुए हैं। सत्वादि के आश्रय से परमात्मा टिका हुआ हो ऐसी बात नहीं है। त्रिभिर गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक राजस तामस, इन तीन गुणमय पदार्थों से मोहित यह सारा संसार इन सब से परे अपरिवर्तनशील रूप से विद्यमान मुझे नहीं पहचानता। प्रकृति के गुणों के कारण यह भ्रम अर्थात मोह है। अर्थात यद्यपि प्रकृति के सत्व रज तम ये तीन गुण मेरे कारण ही टिके हुए हैं, तो भी यह सारा जगत प्रकृति के इन तीन गुणों को ही सब कुछ समझकर इनके द्वारा भ्रम में पड़कर मुझे नहीं पहचान पाता। इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि मैं इन तीन गुणों से परे हूँ और अविनाशी हूँ। मनुष्य की दृष्टि इन तीन गुणों तक ही सीमित रहकर आगे नहीं जा पाती।

0: दिया है कि सूर्य चंद्रादि तथा अन्य नाना दिव्य गुण युक्त पदार्थों से बनी हुई यह जो मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति की ऐश्वर्यमयी माया अर्थात रचना है, इसका पार पाना अति कठिन है। जो इसके पीछे चलाने वाली शक्ति मैं हूँ यह जानकर मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया के पार उतरते हैं। अर्थात हे पार्थ, यह तीन गुणों वाली गुणमयी प्रकृति मेरी दैवी माया है। दिव्य गुणों के कारण यह दैवी है, अलौकिक है, इसका पार पाना कठिन है। जो लोग केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया रूपी नदी को पार कर जाते हैं। माया का अर्थ माया तो है ही, परंतु इसका अर्थ श्री सातवलेकर ने कला, कौशल, हुनर, कारीगरी भी किया है। माया से अर्थात कौशल से कुम्हार मिट्टी द्वारा घड़े का निर्माण कर देता है। घड़े का लोग उपयोग करते हैं, घड़े के मूल तत्व मिट्टी को भूल जाते हैं। घड़ा बना रहा तो प्रसन्न, घड़ा टूट गया तो दुखी होते हैं। यह सब क्यों होता है? माया द्वारा, कारीगरी के द्वारा मिट्टी से घड़ा बना, उसकी माया, कौशल, कारीगरी द्वारा तीन गुणों को लेकर संसार बना। इस माया ने, परमेश्वर की कारीगरी ने ही तो हमारा ध्यान इसके मूल से भटका दिया है। वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये सब परमेश्वर की माया है, उसकी रचना है। ठीक ऐसे ही जैसे घड़ा मनुष्य की माया है, उसकी रचना है, उसकी कारीगरी है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत जाना आसुरं भावमाश्रिताः। परंतु माया से जिनकी बुद्धि हर ली जाती है, जिन्होंने आसुरी भाव धारण कर लिया है, बुरे काम करने वाले मूर्ख नराधम लोग मेरी शरण में नहीं आते, इसलिए वे माया रूपी नदी को पार भी नहीं कर पाते। अर्थात हे अर्जुन, जो इस रचना रूप माया के फेर में पड़े रहते हैं और सामूहिक कल्याणार्थ यज्ञ रूप कर्म न करके मेरा मेरा करने वाले आसुर भाव में पड़े हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में जीवन बिताते हैं, जिनके मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूत यज्ञ भावनामय ज्ञान इस भौतिक संसार द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, वे भाग्यहीन मूढ़ नराधम मेरी शरण में नहीं आते। श्रीमद् भगवद् गीता का मुख्य लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो। किसी भी परिस्थिति में वह परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे। श्रोताओं, आज गीता संदेश कार्यक्रम में आपने गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 12 से 15 तक श्लोकों की व्याख्या सुनी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक की व्याख्या सुनी। प्रस्तुति थी डॉ. ऋचा त्रिवेदी की, FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। और आज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कार्यक्रम होगा जय जवान शाम 7:30 पर, और गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। और आज इसमें आप श्रवण करेंगे कुछ शब्द। रात्रि 8 होगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। चांदनी रातें हम लेकर आएंगे रात्रि 10 से। तो ये थी कार्यक्रमों की कुछ जानकारी। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। और अब प्रस्तुत

0: कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बाण भाइया ने चतुरु भाई की ओरत है
1: और सविंदर शर्मा की ओरत है।
0: राम राम
1: राम।
0: सविंदर भाई, खेत क्यार की बात करे तो आज का जो समय है ना, वो एक अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि खेत बचाओ अभियान
1: जी।
0: और इस खेत में, इस खेत अभियान को बचाने का, जो किसान भाइयों को जागरूक करने का, जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हम लगातार उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम अंधाधुंध उर्वरक, चाहे नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग कर रहे हैं, वो अब हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो गया है। क्यों क्यों सिद्ध हो गया है? क्योंकि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वह दिन पे दिन कम होती जा रही है। और इस बारे में जो सविंदर, जो कृषि अनुसंधान है,
1: हाँ जी, जो कृषि अनुसंधान है जी, और जो शिक्षा विभाग है उनके अंतर्गत अगर बात करें तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसको राष्ट्रव्यापी एक तरह का खेत बचाओ अभियान जो है वो चला रहा है जी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है जी। इससे क्या हुआ, इससे तो मृदा का तो स्वास्थ्य है जी, और जो संतुलित उर्वरक का उपयोग है, और टिकाऊ जो कृषि है इस पर केंद्रित है ये खेत बचाओ अभियान। और जो खेत बचाओ अभियान है ये किसाना खातर बहुत ही हितकारी है जी।
0: और सविंदर भाई, इसके साथ साथ इस अभियान के अंतर्गत जो है जागरूक शिविर भी लगाए जा रहे हैं गांव-गांव में। जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो जा जा कर, जो जिन भाइयों द्वारा खेत हैं, या जो भाई खेत में काम कर रहे हैं, या जिन द्वारा थोड़ी जोत है, तो वो भाई अपना जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इनको समझा रहे हैं। अब जैसे कि उर्वरकों की बात करी आपने, तो जो हम फसलों में जो उर्वरक डाल रहे हैं
1: जी,
0: वो उर्वरक हमने वैसे तो खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद ही डालने चाहिए।
1: हाँ चतुरु भाई, देखो खेत की मिट्टी जांच तो जरूरी है, और वो तो हर 3-4 साल में एक बार करा लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल करा लेनी चाहिए। और इस तरीके हमने ये पता लग जाएगा कि भाई जो नाइट्रोजन वाली खाद है, फास्फोरस वाली खाद है, पोटास वाली खाद है, गंधक वाली खाद है, ये खादें हमने कितनी मात्रा में, कितनी कितनी हमने अपने खेत में डालनी है, और कौन सी फसल हम ले रहे हैं उस फसल के लिए कितनी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम बात करें नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की,
1: देखो चतुरु भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, ये अलग अलग तरह के पोषक तत्व वाले उर्वरक हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो जो अधिकतर नाइट्रोजन है वो यूरिया के रूप में जो है वो खेत में उपलब्ध हो जाए, और जो यूरिया है वो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत भी है। यूरिया में तो नाइट्रोजन जो है वो फसल में मिले हैं, और अधिकतर जो है अर्पकार की भूमि में और फसल में इस यूरिया का उपयोग करा जा रहा है। और जी अगर गंधक की कमी वाले खेत जो है उनमें अमोनियम सल्फेट अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।
0: और सविंदर भाई इसमें यह भी है, जो अमोनियम सल्फेट है वो अगर हम डाल रहे हैं तो जिन भाई इधर जहाँ असिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ किसान खाद एक लाभदायक,
1: बिल्कुल
0: जो वो किसान भाइयों के लिए अच्छी हो सके। रही बात फास्फोरस वाली उर्वरकों के बारे में, और जो फास्फोरस जो उर्वरक है ये पानी में घुलनशील है, जैसे कि,
1: जैसे अगर मैं नाम लूं तो सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, और डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, आदि ऐसे तरह के कई जो है वो फास्फोरस वाले उर्वरक है जिनकी फसल में आवश्यकता होगा। और जो अम्लीय भूमि है उनमें रोग

0: फॉस्फेट और गंधक की कमी वाली भूमि में सिंगल सुपर फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, इनका उपयोग जो है वो लाभदायक होगा।
1: शैलेंद्र भाई एक और बात बताऊं, हाँ, कि जो पोटास वाले उर्वरक है ना
0: जी,
1: जिन्हें पोटासियम क्लोराइड कह दे हैं,
0: हाँ जी,
1: ये एक अच्छा स्रोत है क्या का, जहां जो जमीन है हमारी,
0: हाँ,
1: और उस जमीन के अंदर जो है क्लोरीन,
0: क्लोरीन ठीक,
1: जो सह नहीं पाती धरती, जैसे कि तंबाकू वाली अगर हम फसल ले रहे हैं या आलू वाली फसल ले रहे हैं या कुछ फलों वाली जो फसल है जिनमें पोटासियम सल्फेट है जो कि जरूरी है, लेकिन पोटासियम क्लोराइड जो है वो महंगा है, इसलिए जिन फसलों में हमने अच्छी पैदावार लेनी है तो वहां हम पोटास का प्रयोग कर सकते। रही बात गंधक वाली फसल के बारे में, और गंधक के लिए हम जिप्सम है या सिंगल सुपर फास्फेट है, अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट है, और पोटास की कमी जो है सल्फेट ऑफ पोटास जो है वो पूरी करता है। जो सूक्ष्म तत्व है उनका अगर जिक्र करो तो उनमें कौन कौन से
0: तो चतुर्भाई अगर सूक्ष्म तत्व भी जो है फसल ना जरूरी चाहिए है, जिनमें जिंक की अगर बात करें तो उसके लिए जिंक सल्फेट है, अगर लोहे के लिए प्रयोग करें तो वो फेरस सल्फेट है, अगर तांबे की कमी है तो उसके लिए कॉपर सल्फेट है, मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करो।
1: आपने पता है जब धान की फसल के अंदर जिंक की कमी हो जाए तो उसके लक्षण क्यों हैं? उसके लक्षण ये हुए हैं कि जो पत्ते हैं उनके ऊपर धब्बे बन गए, और वो पहले छोटे धब्बे बनेंगे फिर बड़े धब्बे बनेंगे और फिर जो है पूरा का पूरा पत्ता जो है वो नष्ट हो जाए।
0: बिल्कुल चतुर भाई, पहचान होगी तभी तो।
1: हाँ,
0: का प्रयोग
1: इसीलिए जो है हम उसमें जिंक का प्रयोग कर रहे हैं, और जिंक जो है गोड़ कर जो है उसके ऊपर हम पत्ते के ऊपर बखेर दें। अब उर्वरकों की बात करें तो जैसे हम विधि की बात करें तो कई भाई जो है खड़ी फसल में दे हैं, कई भाई जो है वो पानी के साथ मिला के भी दे हैं, कई फसलों पर छिड़काव भी करते हैं। तो रही बात जो हम अगर जमीन में प्रयोग करें, खेत की मिट्टी में प्रयोग करें, तो इस विधि में हम
0: तो अगर देखो जी डायरेक्ट भूमि में अगर प्रयोग करें उर्वरक का, तो इस विधि में जो उर्वरक की जो बुआई करते समय जो ड्रिल या जो पोरे द्वारा करी जाओ है, एक तो मशीन होगा है, और जो किसान के पास कोई यंत्र ना हो तो वो सीधा हाथ होता है छींटा मार का बिखेर सकता है।
1: कई बार वो कट्टे में गाल के आपने देखा होगा कि छिड़काव
0: जोड़ टांगला है हाथ में और एक हाथ जो
1: एक हाथ वो करते रहे। खड़ी फसल की अगर हम बात करें तो खड़ी फसल में जो है जैसे छोटी फसल है या पौधों की जो लाइनों के बीच में जो है हम हाथ से भी बखेर
0: सके,
1: तो इस तरह से हम अपना जो उर्वरक है उसको हम हाथ से भी पानी से भी। और रही बात पानी का अगर हम जिक्र करें तो छिड़काव का पहले कर ले हैं, क्योंकि उर्वरकों को पानी में घोड़ के स्प्रे से पत्तों के ऊपर हम छिड़क के ताकि उर्वरक जो है वो जमीन के पौधे के अंदर जो
0: अच्छे तरह चले जाओ,
1: और खड़ी फसल में इस तरह से जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी ना हो, जैसे नाइट्रोजन है जो सूक्ष्म तत्व है, तो इन तत्वों की हम कमी अपने खेत में पूरी
0: कर सकते हैं। बिल्कुल चतुर्भाई सही कहा आपने,
1: लेकिन जब बात कई बार आवे है तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जो पोषक तत्व है वो मिट्टी का जब हम जांच करा लें तो ही हमने संतुलित मात्रा में देना है। न्यू नहीं कि भाई एक कट्टा उसका मार दिया और एक कट्टा यूरिया का ले लिया, एक कट्टा पोटास का ले लिया, एक कट्टा किसान का, ऐसे अपनी तरफ से कोई भी संतुलित खाद जो है बिल्कुल भी नहीं बनानी है। दूसरी बात आ है कि खाद का टाइम और जो तरीका है वो बताया हुआ है कि भाई यह खाद ऐसे देनी है, और बीज और खाद को हमने आपस में नहीं मिलाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। रही बात खड़ी फसल में,
0: देखो चतुर्भाई जो खड़ी फसल है उसमें जो नाइट्रोजन उर्वरक है वो देने के बाद खुला नहीं छोड़ दो, तुरंत हल्की गुड़ाई कर दो ताकि वो उसमें अच्छी तरह मिल जाए और जो फसल की पैदावार है वो अच्छी हो जाए।
1: तो शैलेंद्र भाई हमने ये बातचीत करी कि भाई किस तरह से हम अपनी फसलों में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको मिलाकर और हम

0: अपने खेत की मिट्टी को सही तो कर सके, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा हाथ भी बोचना है रासायनिक खादों पर, क्योंकि जो जैविक खादें हैं वो भी जरूरी है। और जैविक खादों में आप सब हम सब जाने हैं, जो केचुए की खाद है, पत्तों की खाद है, गोबर की खाद है, कुरड़ी की खाद है, और जो केचुए की खाद है, इनका हम प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनका ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो भी खेती को देख सके
1: और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ सके, वो भी खाते बढ़ेगी।
0: और अब बात कर लिया मौसम की, तो भाई मौसम तो देखो आंधी रूले का चल ले रहा है, आप देख रहे हो कि भाई मौसम में कहीं गर्मी हो जाए, कभी ठंड हो जाए, तो ऐसे में हमने जो मौसम है उसके हिसाब की अगर हम बात करें, तो अधिकतम की बात करें, तो आज का मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 31 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान की अगर हम बात करें, तो कल जो तापमान है वो अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, और मौसम में किते किते गरड़ फरड़ भी हो सके। ये तो रही मौसम की जानकारी। और कल के कार्यक्रम का जिक्र करें, तो कल हम सब जाने हैं कौन सा कार्यक्रम है,
1: कल मंगलवार है जी, तो कल जो रहेगा वो फोन इन कार्यक्रम रहेगा।
0: और आप जो है हमारे स्टूडियो में जो डॉक्टर साहिबान आएंगे उनसे आप अपने सवाल पूछ सके हैं, और जानकारी हम आपको देंगे थोड़ी देर में। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बातचीत, और अब समय क्या कह रहा है,
1: ये किसान भाइयों को थोड़ा मनोरंजन हो जाए,
0: मनोरंजन हो जाए, तो मनोरंजन आप भी करो, अरे हम भी करें और भाई भी करेंगे, क्या आता है इस रागनी के गैल।
2: बोली कर कर के भंडारे वो देवरी, मोड़ने जमाया करता

तो शैलेंद्र भाई, या तो सुनिए हमने रागनी रणवीर सिंह और साथियों की आवाज़ में। और अब हम बात

0: करें भाई, जो रासायनिक खाद है उसके साथ साथ हम जो रासायनिक दवाई है उनका भी खेत क्यार में हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो रासायनिक दवाइयां हैं शैलेंद्र भाई, उनका हम जैसे कीड़े मार जो दवाइयां हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोई एक आधा कीड़ा दिख जा जबे अपना दवाई ना घोलेंगे और छिड़काव जो है वो करना शुरू कर देंगे, कदे सारे खेत में ला जाए। हाँ, बचाव जरूरी है लेकिन इतना नहीं कि भाई जो थोड़ा बहुत एक आधा कीड़ा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लग जाए तो कुणबा कुणबा गणा दिखने लग जाए तो जब जो है हमने दवाई का इस्तेमाल अगर हम करें। लेकिन जो दवाई है, जो रासायनिक दवाइयां हैं, वो दवाइयां हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए हम जो रासायनिक जो दवाइयां हैं उनके बनाने की बजाय हम जो प्राकृतिक दवाइयां हैं हम अपने जो कुदरत ने हमें दिया है उसके हिसाब से अगर हम दवाई जो है बनावें तो भी हम कीड़े मकोड़ों से अपनी जो फसल है उसको बचा सकते। अब निमस्त्र की बात करें तो निमस्त्र बनाने की विधि,
1: शत्रु भाई निमस्त्र अगर किसान भाई था निमस्त्र के बारे में बताओ तो निमस्त्र समझो कि नीम की खाद एक तरह की, तो इस निमस्त्र का प्रयोग क्यों करा जाता है तो ये बता दें। जो फसल में रस चूसक है या फल और तना छिदक जो कीट है उन पर नियंत्रण करने खातर निमस्त्र का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।
0: और शैलेंद्र भाई 6 महीने तक इनको हम स्टोर भी कर कर
1: जी जो है। जो ये गोल बनाया जाए नीम का जी ये 6 महीने तक जो है वो रख सके। तो अगर इसके बनाने की विधि को प्रभात करें तो एक बड़ा बर्तन ले लो जिसमें लगभग 100 लीटर पानी हम भर सके।
0: ड्राम
1: ले लो, ड्राम में 100 लीटर पानी भरो और उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र और साथ ही 5 किलो देसी गाय का गोबर जो वो मिला लो और साथ में कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्ती और जो निमोली हो वो भी 5 किलो जो निमोली है जिसने नीम के बीज कहता है वो भी अच्छी तरह कूट पीस का वो इसमें मिला लो।
0: यानी कि किसे डंडे डूंडे था उसको घोल ले।
1: बिल्कुल चतुर भाई, ये दिन में ये घोल जो है वो कम से कम 2-3 बार जरूर घोल देना चाहिए ताकि वो अच्छा मिल जाए आपस में और 24 घंटे तक उन्हें रख दे ताकि वो अच्छा आपस में मिल जाए,
0: खमीर सा उठ जाए।
1: जी बिल्कुल। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि लकड़ी तय वो गोलना चाहिए 2-3 बार, उसके बाद जब वो अच्छी तरह मिल जाए तो सूती कपड़े के लो उसने छान लें और जो छानने के बाद जो गोड़ हम पर तैयार होगा वो समझ लो एक तरह का निमस्त्र जो है वो तैयार हो चुके हैं। और उसका छिड़कन का जो इस्तेमाल का तरीका अगर हम बात करें तो जो गोड़ है वो 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में गोड़ का जो है उसकी स्प्रे जो है वो कर देनी चाहिए।
0: और जैसे कि शैलेंद्र भाई आपने बताया कि 100 मिलीलीटर इसको हमने नापने की जो विधि है वो बड़ी ध्यान से रखनी।
1: बिल्कुल चतुर भाई,
0: क्योंकि ज़्यादा हम डाल देंगे तो भी नुकसान है, पानी कम रहेगा तो भी नुकसान है, इसलिए 100 मिलीलीटर ध्यान से उसको न 5 लीटर में मिला कर और फिर जो है उसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो जितने भी जो रस चूसने वाले कीड़े हैं मिलीबग है वो या तो छोड़ के बाद जाएंगे या
1: वो सब खत्म हो जाएंगे,
0: नष्ट हो जाएंगे। फिर भी ये देख ले कि अगर नहीं कोई इक्का दुक्का रह रहा है तो 15 दिन का बिचाड़ा दे के और फिर दोबारा से हम छिड़काव इसका कर सके। तो ये तो बताई नीमस्त्र के बारे में। और इसके बाद नीमस्त्र का जो प्रयोग है वो उसमें हम कई बीमारियों के इलाज में भी कर सके हैं, जैसे शरीफा है, शरीफे को भी हम लेकर बीज पत्ती कच्चा फल इन सारा न लेकर और हम इसकी एक लेई सी बना ले और जो कि फल की मक्खी या हरी बग है उसको हम रोकने में इसकी मदद ले सकें। और इसमें जो है 500 ग्राम पत्ते 25 लीटर पानी में उबाल लें और जब 1/4 रह जाए तो उसने तार के और 15 लीटर पानी में मिला के इसका अगर हम स्प्रे कर देंगे शरीफे का तो कई तरह की जो फल की मक्खी है हरा बग है इनसे हम अपने जो बाग

0: है या खेत है उसको हम बचास कहें। अब बात आवे है कि भाई किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सके हैं कि भाई हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें, जैसे लहसुन है, अगर हम लहसुन का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर इस समय हमारे जो कृषि वैज्ञानिक भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते जा रहे हैं। और कि अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन में भी जो है कीटनाशक, जीवाणुनाशक, कीड़े नाशक, और इसके जो ऐसे तत्व हैं, ये तत्व जो हैं वो हमारी खेती को बचा सके हैं। और इसमें जो है जीवाणु है, लेई है, और घर की मक्खी है, माइट है, सफ़ेद मक्खी है, इसका भी हम उसको प्रयोग करके हम उसमें जो लहसुन है उसका प्राकृतिक खेती में भी हम इसका प्रयोग कर सकें। अब लहसुन ले लिया हमने, इसका खेत क्यार में जो करना के है, तो वही लहसुन ने कूट के और 10 मिलीलीटर इसमें तेल मिला ले,
1: कौनसा कैरोसिन का तेल,
0: कैरोसिन मट्टी का तेल तो बंद हो गया, फिर के गेरांगे एक तारपीन का तेल आ है,
1: तारपीन का तेल
0: वो बाजार में मिल जाए आजकल, तो उस तेल ने मिला के 2 दिन तक ही बेना है लहसुन, उसमें
1: 2 दिन तक बेगा रखना,
0: हाँ
1: ताकि अच्छा मिल जाए उसमें,
0: हाँ और उसमें 1-2 चम्मच हमने मिलाना है सरफ पाउडर। सरफ कौन सा
1: सरफ, ये
0: जो जिस तरह हम लत्ते दो
1: पाउडर, ठीक
0: लत्ते दो ना वो सरफ का पाउडर ले गए, चाहे वो निरमा हो, मेरी माँ हो, तेरी माँ हो, कोई सा हो, ठीक है, वो लेके और उसमें हमने अच्छी तरह उसको गोल बनाना है और उसमें 15 लीटर पानी मिलाना है।
1: बिल्कुल
0: लहसुन की बात बता रहा हूँ मैं, अरे इसने गोल के अच्छी तरह से छान के, अगर हम इसका भी स्प्रे कर देंगे ना तो कई तरह के कीड़े मकोड़े वे भी
1: नष्ट हो जाएंगे,
0: बच जाएंगे। अब नीम है, नीम का प्रयोग हम कद कराया कर रहे थे, नीम का प्रयोग जब कर रहे थे जब हम अनाज भंडारण में, अनाज की पत्तियां जो है नीम की पत्तियां जो है अनाज के भंडारण में हम तड़े भी दरिया करते, फिर ऊपर तक क्यों सुरसरी वगैरह, तो नीम से हम अपना उनको भी बचा सके। और इसमें जो है अगर नीम की बात करें तो रात भर जो है ना 1 किलो पत्ते लेने हैं, उसने 2 लीटर पानी में भे कर रखना है और 15-20 मिनट तक उबाल लें, और जब 1/4 रह जाए फिर उसमें पानी नतार ले, और 10 से 15 लीटर पानी इसमें हमने मिला के और छिड़काव करना है। इस तक कौन कौन से जो कीड़े हैं उनके ऊपर हम रोकथाम कर सके हैं, कौन कौन से हैं?
1: इस तरह चतुर भाई अगर बात करें तो फल छेदक हो है, फल छेदक जो है इस तरह ठीक हो जाए, और लेव ऊपर, लेव माइनर, माइट और थ्रिप्स और सफेद मक्खी या दिमक, इन सब तक बचाव जो है
0: हम नीम से कर नीम का कर नीम का तेल है। कई बार आपने देखा होगा कि नीम का तेल जो है हम पानी में 2-1 बूंद गेर कर फिर जो अगर स्प्रे कर दे तो भी हम अपने जो छोटे पौधे हैं, जो फूल वाले पौधे हैं, उनको भी हम बचा सकते। एक और बात शैलेंद्र भाई, जो पपीता है, पपीता मखावा तो है,
1: बिल्कुल जी
0: देखा होगा आपने,
1: बिल्कुल देखा जी, खाया
0: कल भी खा रहे थे आप,
1: खाया भी है, देखा भी है,
0: तो पपीता लेके और उस पपीते का हम जो पत्ते हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सके हैं और बीज का भी इस्तेमाल कर सके, कच्चे फल का भी इस्तेमाल कर
1: सके। पपीता तो एक अच्छा आयुर्वेदिक टॉनिक एक तरह से,
0: हाँ टॉनिक भी है, और अगर नुकाग्रह के भाई कच्चा पपीता नुकाग्रह भाई जख्म के ऊपर बांध देना तो जख्म भी ठीक हो सके। तो इसमें क्या करना है, हमने पपीते में 1 किलो कुटाया पपीता लेना है और उसके पत्ते लेने हैं 1 किलो, और 1 लीटर पानी में इस रात ने बेकर धर दें, और दूसरे दिन जो है उसमें वो 1 चम्मच सरफ का पाउडर मिला के और इस न छान ले, और 15 लीटर पानी में यो स्प्रे मिला के अगर हम छिड़काव कर देंगे तो भी हम जो थ्रिप्स है, फल की माखी है, इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और देख शैलेंद्र भाई गड़ी भी कह रही है भाई चलन का टाइम हो गया है,
1: टाइम हो गया,
0: तो भैया ते लेवा इजाजत, तो अच्छा भाइयों,
1: राम
0: राम राम।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने ये सारे बन माया ने चतुर भाई की ओर था
1: और सुविंदर भाई की ओर था
0: राम राम भाई। सुविंदर भाई कुछ लेकर आ रहे हो आप?
1: बस वो लेकर आया थोड़ा
0: ये थोड़ा
1: आम का रस था।
0: ओ तेरी हम तो आम के पाछा लठ ठाए पड़े बजन
1: एक सीजन आम को चल रहे शत्रु भाई
0: ये भी मेरे ख्याल अचार खतर या आम भी कटवा कर ले रहा होगा मंडी में।
1: हाँ थोड़ा सा अचार डलवाना
0: है। अचार भी डलवाना है ठीक ठीक। तो अचार भी डलवाओ आम का रस भी पियो जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है
0: क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर आप फलों का सेवन करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप तंदुरुस्त भी रहोगे।
1: तंदुरुस्त भी रहेंगे
0: क्योंकि क्या है ना किसी ने कि भाई स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ विचार आवे हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग अगर होगा तो आप तंदुरुस्त
1: रहेंगे।
0: तो फलों का सेवन जो है बहुत जरूरी है सुरेंद्र भाई। और हम देखने ला रहे हैं कि आजकल इन दिनों में आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि पानी इन दिनों में पानी की कमी हो जाए चाहे इंसान है चाहे वो पशु पक्षी है। और पशु पक्षियों की अगर हम बात करें तो इन दिनों में आप थोड़ा सा पानी जो है किसी टूटे हुए गड्ढे में कसोरे में आप रख दें ताकि वो बेजुबान जो जीव हैं वो पानी पी के अपनी प्यास जो है वो बुझा सके। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे किस विषय के बारे में?
1: आज चतुर्भाई जैसा कि 29 जून है और आज एक महान संत जो कबीरदास जी हुए हैं उनकी जयंती मनाई जा रही है।
0: उसके बारे में चर्चा हम करेंगे लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
2: बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: जिंदगी अनमोल है इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
7: सिर की चोट नसों की हर समस्या ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
6: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
7: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
6: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
7: 8708903436।
0: सुंदर भाई
1: हाँ चतुर भाई
0: कार्यक्रम में पहले भैया करवा दे मनोरंजन।
1: बिल्कुल मनोरंजन
0: एक रागनी के गेल वेद प्रकाश कौशिक और साथियों की आवाज में है या रागनी कौन सी है भला आइए सब सुन।

0: तो भैया पहले सुनते हैं कुछ संदेश और उसके बाद हम करेंगे चर्चा कबीरदास के बारे में।
1: दर्द नहीं जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्ज्वल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
2: तो सुरेंद्र भाई, आज कबीरदास जयंती है।
3: बिल्कुल शत्रु भाई,
2: और कबीरदास जयंती के बारे में क्या कह रहे कि इनका जो दोहे हैं वो हमारे जो व्यवहारिक ज्ञान है, नैतिकता है और आध्यात्मिकता है, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए।
3: बिल्कुल चतुर भाई,
2: तो इस तरह से बहुत सारे इनके दोहे हैं और आप थोड़ा बताना चाह रहे थे।
4: हाँ चतुर भाई, देखो अगर जो संत कबीरदास जी है, एक सिर्फ संत ही नहीं है, महान समाज सुधारक भी थे। और इन्होंने अपने दो होता है जो है समाज में एक नैतिकता का जो संदेश दिया है, समाज सुधार के जो काम करे हैं वो बहुत ही आजकल के टाइम में मायने भी रखे हैं। तो इन जो महान संत का जो जन्म की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1398 में हुआ था, और वो हुआ था काशी में, जिसने बनारस वाराणसी आजकल प्रयागराज भी बोलते हैं। तो जन्म तो होया जी, तो जन्म के टाइम जो इसके माता पिता थे वो लोक लाज ते बचन खातर इन्हें एक लहर तारा जो तालाब था उस पर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद जो नेहरू और नीमा नाम का जो जुराह दंपत थे, जुलाहे थे वो, उन्होंने इनका पालन पोषण कराया, पालन पोषण कर, लेकिन ये इन्होंने खुद स्वीकार किया, ये बिल्कुल निरक्षर थे, अनपढ़ थे, कोई भी अक्षर नहीं पढ़ा, मसीह कागज छुए नहीं, कमल कलम गहो नहीं हाथ, यानी कि खुद इन्होंने स्वीकार करी है बात कि मैंने कभी कोई शाही दवात कलम हाथ में टच नहीं करी बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी ये काफी ज्ञानी संत थे, और इनके अगर बात कराए दोहे की, जैसे आपने दोहा बताया, इस दोहे में गुरु को गोविंद के समान दर्जा दिया, यानी कि जो गुरु है वो भगवान से भी बड़ा है। अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो भगवान से पहले हम गुरु की वंदना जो है वो करेंगे जी। तो साथ ही चतुर्भाई, संदेश जो दिया है कबीरदास जी ने, जैसे एक दो आज काफ़ी प्रसिद्ध है संत कबीरदास जी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, यानी कि अपना ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए जो औरों को भी अच्छी लगे और खुद को भी अच्छी लगे
2: जी।
4: तो अगर बात करें संत कबीरदास जी के जन्म के बाद जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई एक स्थान है मगहर,
2: मगहर,
4: मगहर, और मगहर के बारे में एक लोगों की मान्यता थी कि जो मगहर में प्राण देगा त्यागेगा वो नरक में जाएगा।
2: अच्छा,
4: लेकिन इस मानता ये मानता खत्म करने खातर कबीरदास जी की जी मृत्यु जब नजदीक आई तो वो काशी ना छोड़कर मगर माँ का ही अपना शरीर जो है वो त्याग गया, ताकि लोगों का ये भ्रम दूर हो जाए, ठीक है। और बात करा चतुर्भाई संत कबीरदास जी की पुस्तिका के ऊपर, तो ये खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन जो इनके शिष्य थे वो धर्मदास थे, उन्होंने इनकी जो वाणी है जो इन्हें मुंह से बोल ली उन्होंने वो लिख दी सारी। तो साखी शब्द रमैणी इनकी वाणियां है, वो तो बीजक नाम की एक पुस्तक है प्रसिद्ध, उसमें से इन सबका संकलन इन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार जो हमारे जो संत थे इन्होंने समाज को काफी अच्छा संदेश दिया जो समाज के लिए काफी हितकारी भी रहेगा।
2: और इसके साथ साथ सलीन भाई, आज एक और दिन को हम मना है, वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
4: जी चतुर।
2: और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है इसकी स्थापना जो है सन 2006 में करी गई थी, और भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसके आधार पर इसकी स्थापना करी थी। और ये आयोग एक अध्यक्ष जो के थोड़े समय के लिए हो है, अंशकालीन हो है, चार जो और सदस्य हैं इसके हैं, और भारत के जो सांख्यिकी विद है उसका पद जो है विशेष रूप से

0: स्टैटिस्टिकल जिसने कह दे हैं सांख्यिकी कार्यालय पद अध्यक्ष के रूप में जो है ये एक मनोनीत करा गया था। और भारत सरकार में जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है इसमें भी ये सचिव जो है वो रहे।
1: बिल्कुल चतुर भाई। और साथ ही अगर बात कर रहा है तो सांख्यिकी दिवस इसका उद्देश्य क्या है तो जो सामाजिक आर्थिक नियोजन है तो नीति निर्माण है इसमें सांख्यिकी काफी महत्व है। जैसे हम अखबार पढ़े हैं अखबार में जो ब्यौरा आवा जो डिजिटली जो डिजिटलकरण है अखबारों का उसका जो है जो सांख्यिकी का उनमें बहुत महत्व है जी। और इस वर्ष की जो 2026 की सांख्यिकी दिवस की जो थीम है अगर उसकी बात करें तो वो थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लोगों का इसके बारे में बताना जी।
0: और इसके साथ साथ सुलेंद्र भाई जो हम अगर बात करें इस साल के उसकी थीम के बारे में तो आपने बता दिया। और प्रोफेसर पीसी महालैनोबिस का योगदान भी रहा है क्योंकि बहुत सा एक डाटा इकट्ठा करना फिर उसको कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर हम एक सड़क बना रहे हैं तो उस सड़क के बारे में कितने मीटर की सड़क है कितना इसमें लोहा लगा सरिया लगेगा कितना रोड़ा पड़ेगा कितना तार को लगेगा और कितने दिन तक उस पर रोड रोलर चलेगा तो इस तरह से ये जो डाटा है वो इकट्ठा करके सरकार को हम देंगे ताकि जो एस्टीमेट है क्या करना जिसने कि भाई एक अनुमान सा लाग जाएगा कि भाई इसमें इतने पैसे खर्च
1: बिल्कुल चतुर्भाई
0: तो इसने हम ISI जिसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो भी कह दे हैं। और इसमें बहुत सारी हमारी जो आने वाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमने डाटा इकट्ठा करके ताकि हम आगे जो है अपने कार्यक्रम में और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो एक डाटा इकट्ठा करके और इसके बारे में हमने पूरी जानकारी
1: होनी चाहिए और लोगों तक भी बता देनी चाहिए जानकारी साथ।
0: और अब चलते चलते बयां करवा दे मनोरंजन एक हरियाणवी फिल्म के लोकगीत के गैल आइए सुनते हैं

0: और वही हरियाणवी फिल्म हमारी धरती हमारी माँ के इस गीत के गिले आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हो समाप्त। चतुर भाई ने और
1: शविंदर भाई ने दीजिए
0: इजाजत। तो अच्छा भाइयों,
1: राम
0: राम, राम।

कुछ कहेंगे कि सप्ताह का प्रथम दिन है और हम अपने सैनिकों से रूबरू हैं इस वक्त अपने फौजी भाइयों के साथ। और ये कार्यक्रम हमारे उन सभी सैनिकों को समर्पित है जो दिन रात देश की सीमाओं पर डटे रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो उनके अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को सादर नमन करते हुए गीतों और इस एक छोटा सा जो गुलदस्ता हम सजा कर लेकर आते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, उनके लिए आज की ये जो पहली प्रस्तुति लेकर आए हैं वो है फिल्म धर्मा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत दिया है सोनिक ओमी ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, एचआईवी और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: और आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म विधाता का गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाजें हैं सुरेश वाडकर और अनवर की। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और इसी के साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से. नमस्कार. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 MHz पर. यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता. कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से. और दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम श्रद्धा और सम्मान के साथ सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर, यानी जो कल मनाया जाएगा, उसमें हम गुरु जी को ये समर्पित करेंगे ये प्रोग्राम. और गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्म 1595 में गुरु की वडाली में हुआ. वे गुरु अर्जुन के सुपुत्र थे और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और अन्याय के विरुद्ध साहस और क्या होता है उनका जो शौर्य रहा, दोनों के महत्व का जो संदेश दिया, और इसी भावना को उन्होंने मीरी पीरी के सिद्धांत से स्थापित किया जो सांसारिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन का प्रतीक बना. उनका जीवन हमें सत्य, सेवा, निर्भयता और मानवता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है. तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनके आदर्शों को

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और दोस्तों इसी शब्द के साथ इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कुछ शब्द, कार्यक्रम था गुलदस्ता FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का, और संत कबीरदास जी के इस कालजयी दोहे के साथ हम आपका बेहद स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, और आज है आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त ज्योतिषमा। आज संत कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे उस महान संत, कवि और समाज सुधारक को, जिन्होंने अपनी सादगी भरी वाणी से प्रेम, सत्य, समानता और आत्मचिंतन का संदेश दिया। कबीर दास जी ने न केवल समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया, बल्कि इंसान को अपने भीतर झांकने की सीख भी दी। तो उनकी अमर वाणी को नमन करते हुए सुनते हैं कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिनमें जीवन के सुंदर रंग और गहरे अर्थ समझाए हैं। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज है कबीर दास जी की जयंती, और इस खास मौके पर ये कुछ फिल्मी भजन कह सकते हैं आप, या कुछ प्रेरणात्मक गीत कह सकते हैं।

पोथी पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना को होए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ, संत कबीरदास जी का ये अमर दोहा बताता है दोस्तों कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाओं से प्राप्त होता है। और जब हम आज स्मरण कर रहे हैं संत कबीरदास जी को, तो जिन्होंने भारत के महान संत, कवि, समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है, उन्हें माना जाता है कि उनका प्राकट्य ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। और लोक मान्यता के अनुसार उनका पालन पोषण काशी के एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। उन्होंने बुनकर का कार्य करते हुए ही अपना जीवन बिताया और संदेश दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कबीरदास जी ने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर मनुष्य के हृदय में बसता है। उनकी वाणी सरल, सहज और जनभाषा थी, इसलिए उनके दोहे आज भी गांव गांव और घर घर में गूंजते हैं। और आत्मचिंतन और मानवता को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया उन्होंने। कबीरदास जी का जीवन बताता है दोस्तों कि मन की पवित्रता, सच्चे कर्म और सभी के प्रति सम्मान की भावना, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यही चीज़ें हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। तो श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन्हें और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगली प्रस्तुति।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कहा जाए कि कबीरदास जी केवल एक संत या कवि नहीं बल्कि एक जन जन के मार्गदर्शक थे। उनकी वाणी में ऐसी सरलता थी कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसके अर्थ को समझ सकता था, और ऐसी गहराई थी कि बड़े बड़े विद्वान आज भी उस पर चिंतन करते हैं कि क्या ही रहा होगा कि एक उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन या कोई इस तरीके का, कभी स्कूल नहीं गए, किसी विद्यालय या गुरुकुल के दहलीज पर उन्होंने कदम नहीं रखा। लेकिन आज कुछ ऐसा है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम पर थीसिस लिखी जाती हैं, और एक ऐसी गहराई उनके बोलने में, उनके जो शब्द रहे कि वो आज तक भी सभी उस पर पता नहीं कितने सारे शोध किए जा रहे हैं। उन्होंने कभी किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया, बल्कि मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना। उनके लिए ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, बस सबसे पहले थे वो यही कि भाई इंसान है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और इस दोहे में जो संतोष, उदारता और संतुलित जीवन का अद्भुत संदेश छिपा है, तो कबीरदास जी मानते थे कि मनुष्य को उतना ही रखना चाहिए जिससे उसका और दूसरों का भला हो सके। और आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी कबीरदास जी की वाणी हमें प्रेम, सहिष्णुता, सादगी और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है। और शायद यही कारण है कि उनके दोहे आज भी विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, घरों में सुनाए जाते हैं, और तो और जीवन जीने की प्रेरणा वो हमें दे जाते हैं। तो संत कबीरदास जी के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारने का तो संकल्प हमें लेना ही चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदारी और निभानी चाहिए कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन तक ये जो दोहे हैं, जो कबीरदास जी की जो वाणी है, उसको ज़रूर हम पहुँचाएँ।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। किसी की भी काम को टालना अच्छी बात नहीं, जो करना है उसे आज भी, आज ही नहीं अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। और इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु हैं उनके महत्व को भी सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जिनकी बदौलत भगवान तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट हो पाया। तो जैसे एक और दोहा है उनका कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फलो। ये कुछ ऐसे दोहे हैं जो कि अमूमन हर हिंदुस्तानी को शायद याद ही होते हैं। और जीवन में हर काम धैर्य से करना चाहिए। जैसे पेड़ को कितना भी पानी दो किंतु फल उसमें अपने समय पर ही आएंगे। और अब सुनते हैं ये अगला गीत।

और दोस्तों एक प्रसंग है कि संत कबीरदास जी के जीवन से जुड़ा हुआ बेहद ही प्रेरक प्रसंग है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने कबीरदास जी से पूछा कि आपको लोग अपमानित करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, फिर भी आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा। लोगों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। कबीरदास जी ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे कटु वचन कहे और मैं उन्हें स्वीकार ही ना करूं तो वे उसी के पास रह जाते हैं। और यही कारण है कि कबीरदास जी ने मन की शांति को सबसे बड़ी शक्ति माना। वे कहते थे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी मधुर और विनम्र वाणी बोलिए जिसमें ना अहंकार हो और आपके शब्द दूसरों को भी सुख दें और आपके मन को उनसे बेहद अपार शांति मिले। कबीरदास जी ये भी कहा जाता है कि मनुष्य की उन्होंने कहा कि असली पहचान जो है मनुष्य की उसके शब्दों और व्यवहार से होती है, ना कि उसके बाहरी वस्त्रों

या रंग रूप से। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, गुण और चरित्र से करना चाहिए। शायद यही कारण है दोस्तों कि संत कबीरदास जी आज भी केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला का नाम है। उनके दोहे समय के साथ पुराने नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए नई सीख बनकर सामने आते हैं।

और दोस्तों, कबीरदास जी के जीवन का एक और सुंदर प्रसंग है। कहा जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास आया और उनसे बोला, मैं वर्षों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, तीर्थ यात्राएं कर रहा हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं। कबीरदास जी ने उसे अपने करघे के पास ले जाकर के कहा, जहाँ वो कपड़ा बुन रहे थे, मुस्कुरा करके कहा कि देखो, यदि करघे का एक भी धागा उलझ जाए तो पूरा कपड़ा बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही यदि मन ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार में उलझा हो तो बाहरी पूजा से शांति नहीं मिल सकती, पहले मन के धागों को सुलझाना होगा। फिर कबीरदास जी ने कहा कि माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, करका मन का डार के मन का फेर। यदि हाथों से माला फेरते फेरते पूरी उम्र बीत जाए लेकिन मन ना बदले तो साधना अधूरी है। सबसे पहले अपने मन को बदलना ही सच्ची भक्ति है। वही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाई ये मन ही की प्रतीत। मनुष्य की हार और जीत सबसे पहले उसके मन में तय होती है। यदि मन मजबूत और विश्वास से भरा हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों, कबीरदास जी का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। जब मन निर्मल हो जाता है तब हर घर मंदिर बन जाता है और हर इंसान अपना सा लगने लगता है। और शायद यही कारण है कि कबीरदास जी की वाणी सदियों बाद भी हमारे जीवन को संदेश देती है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी हिरण की जो नाभि होती है उसी में होती है, फिर भी उसे वो जंगल में खोजता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर ही हैं लेकिन हम उन्हें बाहर खोजते हैं। कितनी ज्ञान की बातें हैं ये सब।

और दोस्तों, कबीरदास जी ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म, जाति या वेशभूषा से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहारों और कर्म से होती है। उनके दोहे केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए हैं। जैसे वह कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो हमारी कमियां बताता है वो हमारा दुश्मन या शत्रु नहीं, बल्कि हमारा हितैषी है। उसकी बातों से हमें स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। और एक अमूल्य संदेश है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। यानी जब तक मनुष्य अहंकार में डूबा रहता है तब तक वह सत्य का अनुभव नहीं कर सकता, और जैसे ही अहंकार समाप्त होता है ज्ञान का प्रकाश जीवन को आलोकित कर देता है। तो श्रोताओं, आज के समय में कबीरदास जी की वाणी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यदि हम उनके संदेश, प्रेम, विनम्रता, सत्य, सहिष्णुता और मानवता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारा समाज भी अधिक सुंदर और सौहार्दपूर्ण बन सकता है। और इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से अनुमति लेते हैं। एक गीत के साथ आपको छोड़ जाएंगे जहाँ संत कबीरदास जी की अमर वाणी आपके मन में नई ऊर्जा, नई सोच और आत्मचिंतन की एक नई लौ अवश्य जलाएगी। तो जो अब गीत आप सुनेंगे, भाव और मूल प्रतीक जो है उसके, वो संत कबीरदास जी की वाणी से प्रेरित माना जाता है। हालांकि इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने है, लेकिन यहाँ चुनरी शब्द आएगा इस गीत में, तो मनुष्य के जीवन या आत्मा का प्रतीक है। और दाग सांसारिक मोह और अहंकार और बुरे कर्मों का है। तो जो सुनेंगे आप गीत, तो सुनिएगा उसको, और जो कमजोरियाँ हैं हमारी जीवन में, जो भी प्रतीक मानते हैं कबीरदास जी की वाणी में, बार बार हमें ये सब संदेश देखने और सुनने को मिलते हैं। और यही कारण है कि ये जो गीत अब आप सुनेंगे उसको सुनते समय कबीर के आध्यात्मिक चिंतन की याद स्वतः ताज़ा हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दुनिया।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के

0: लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू

0: जंगलों तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में

0: ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says, 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबामन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिले।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा।

0: लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं NR भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर

की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था, लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा, तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोरदा का, वादा तेरा वादा।

फूलों से। तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने

के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया, फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।
1: परांदी जाजर, परांदी जाजर, ले गई

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार जुजुष्मा की ओर से। और आपका ये अपना प्रोग्राम चांदनी रातें और आपके ही फरमाइश के गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में, जिनके लिए आपने व्हाट्सएप मैसेजेस हमें पहुंचाए हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो हमारे हाथ में है वो है सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना। अगला मैसेज है हमारे पास बलकरण वर्मा, अंजनी, राजिम, ज्योति और प्रहलाद वर्मा की ओर से ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के हैं आप सभी श्रोता। जिला खरगोन सनावत से मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुष, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं।

0: सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज और साथ हैं बिट्टा बजाज। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। अगले मैसेज की ओर बढ़ें तो उसमें हैं, अब देखिए यही मैसेज दूसरे नंबर से है, सेम वही जो अभी हमने नाम पढ़े। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत अगली फरमाइश करता श्रोता हैं हमारे पास। रीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और साथ हैं करुणा वर्मा। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा। जेल रोड मथुरा से हैं सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार। छठिया पोखर डोंगराव से फातिमा वली बेलदार, डब्ल्यू वली, असमा वली और सोनम वली। बिहार भवन दिल्ली से हैं सरफुद्दीन और उल्लाह वली कुटरिया। जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, असमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। सरगुजा मेन पार्ट से असमा थापा, सोनम फातिमा और आसमा थापा, वसीम और अक्रम थापा। झांसी से हैं फखरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली फर्जुद्दीन और फर्जु वली अंसारी। और अगला मैसेज है हमारे पास, गांव लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। हरदेव मिका, बलदेव विर्क, जयतेग और मिका विर्क हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब के श्रोता। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से फरमाइश आई है विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोक, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और विनोदपुरी की ओर से। पटेल नगर मुलोक पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुकन्या, सुनैना और सविता भाकरे ने अपनी फरमाइश पहुंचाई है। गिरा गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से हैं सुभाष, शर्विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। अगला मैसेज है मजनू कटीला दिल्ली से हैं कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक ने अपनी फरमाइश भेजी है। गांव जगूड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और सायना शर्मा और साथ हैं निवान शर्मा। ददरेगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। नूरबहर महसोल सीतामणि बिहार से मुसरत जहां, नाज तलाज जहां, फरहत रिफत, नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के हैं आप सभी श्रोता। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म है एक फूल दो माली। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत दिया है रवि ने।
1: ये पर्दा

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसराना और नरगिस खातून। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम और मुस्कान जैन मां साथ हैं मास्टर जीवीएम जैन। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी सोना मदीबा और दानिश। गोला बाजार बक्सर से ही हैं श्रद्धानंद आर्य अभियानंद और परमानंद आर्य। सारिम बाजार बक्सर से राज एजरी अंसारी रासमा खातून अंसारी। बांडीवाला फाजिलका पंजाब से हैं क्रियांश बगड़िया योगेश ओम बेगड़िया बेबी गरिमा बगड़िया रजत और मनीष चौधरी। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण की फरमाइश पहुंची है। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से हैं सुरेंद्र संधू अनीता संधू रोहित रितेश शिखा प्रतीक्षा संधू और साथ हैं मैक्स। नलेश्वर नगर नरवेल जिला बुलढाणा से हैं पीएस नवाकर निर्मला और विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपा

खान, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा और बेबी चाहत और साथ हैं सादिया, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड के हैं आप सभी श्रोता। मजनू कटीला दिल्ली से देखे, अब ये मैसेज पहले शामिल किया जा चुका है लेकिन यही मैसेज सेम नेम्स होते हैं, एक जैसे ही नाम और वो अलग अलग नंबर से आप लोग भेजते हैं। कमर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण और मीना श्रीमाली, सैयद मसरूर, शायना हसन, अफसानाज, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम और अदीब, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आपकी फरमाइश आई है। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेर, मोरस, अनिल कुमार, अजीत और आयुष जंगेर और साथ हैं नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के हैं आप सभी श्रोता, बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी और तानिया नारंग ने अपनी ख्वाहिश भेजी है। अगला अनुरोध है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की ख्वाहिश आई है। अगला अनुरोध है हमारे पास छत्रपति संभाजी नगर सुरवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम बोर गांवकर, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और बेबी ओवी की ओर से। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय नमन और अपार ढींगिया। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले, दुखना, सदव, जूही, इकबाल, इमरान, अहमद, कपछेड़ा बॉर्डर दिल्ली से आसमान अरवीन बाग, आसमा नसरीन बागवान, आसमा परी, राविया मंताशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद और समस्त फूलवाले परिवार। बड़ा बम चौक खंडवा से हैं मध्य प्रदेश से संजीता बमार कंडे, संजय और बेबी किट्टू। अगला मैसेज है शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े का हिंगोली महाराष्ट्र से। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप, गुरनीर, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। एकता कॉलोनी रोहतक के श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल और तन्वी बोध। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमर, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार का मैसेज आया है। अगले मैसेज में है सदर बाजार कुरावली के श्रोता अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और साथ हैं अंकुश अरोड़ा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा और अमित कुमार और साथ हैं हैप्पी दुबीहा। नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय की ख्वाहिश आई है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। और आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को, फिल्म है बिन बादल बरसात, शकील बदायनी की शब्द रचना और संगीत है हेमंत कुमार का।

0: कहो ना
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
2: अगले गीत को सुनना चाहे हैं आप सभी ने राहुल बंसोड़, सम्यक शरण और मीरा बंसोड़ हैं लुम्बिनी नगर अकोला महाराष्ट्र से। नेहरू चौक पठन से हैं सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल और बेबीसिया जाधव जालना शहर से, सोमना जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चैतन्य और मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु और साथ है रिधान खुराना। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल प्रियंका, मन्नत गुरकीरत और गुरु शब्द सिंह, राहुल की फरमाइश पहुंची है। कलनौर से है नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती, बबूरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। पटियाला पंजाब से नाभा से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु की फरमाइश पहुंची है। अगला मैसेज है हमारे पास जवानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर बड़े महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। अगला व्हाट्सएप मैसेज है टोरोमाला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पलक, करण, गीतुनी, हारिका, हार्दिक और वंश बाता ने अपनी फरमाइश पहुंचाई है। लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी और उज्जवल दास मानिकपुरी। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा और विमला अनेज।

राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य हैं। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा के श्रोता हैं आप सभी। किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी, भगत सिंह बुम्बक हैं गांव गोंदर करनाल के श्रोता। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर रहे, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, अर्जुन गवाणकर और टुक टुक। गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। झज्जर हरियाणा के श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटर रजत और मयंक भाटिया। अगला मैसेज है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान और आप सभी ने सुनना चाहा है गीता दत्त को। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आपने सुना गीता दत्त और साथियों को, फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55। अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर झारखंड जमशेदपुर झारखंड से हैं। सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेंद्र जी।

अब ये मजनू कटीला से फिर मैसेज आ रहा है, तो पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, मुंदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से, बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत। अगला मैसेज है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव की ओर से, मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, पांडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनुश्री बुरांडे की ओर से फरमाइश आई है। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी, मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हीरा भाऊ बिड़वे, श्रावण और अनिकेत सोनवणे, पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, गोविंदपुरा सीकर से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता है मोहम्मद वाहिद रूमानी, मोहम्मद जुमैर जमीर, मोहम्मद फसी, जुनैद जुबैर, मुकरम नुमान, फुरकान, जाकिर फाजिल, आप सभी हैं फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता। अगले श्रोता हैं शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया और विशाल सबकाल, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजारी बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब और पवन लुबना और यश मंसूरी, करणवीर हाउस भूचो कैंचिया पंडितना पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत हिजर, कीरत हुजरे और रेहान शेख। नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, शहनाज, अनम, यशफ और रसीद वारसी की आप फरमाइश है मारहरा दरवाज़ा एटा उत्तर प्रदेश से। शेरवानी रोड शेरवानी स्कूल गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। अगला मैसेज है गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यारायण, फुंदीबाई बागरी। कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। फिल्म है दिल तेरा दीवाना, शैलेंद्र की शब्द रचना और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: अगले गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बागपत से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। संभाजी चौक सिड़को न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे। अगले ख्वाहिशमंद है करेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश वाता, नीलम वाता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश वाता। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल मुजा

हैदर नदीम पटेल। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं फुल चिंचोली पंढरपुर से हैं, जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानुवी और बादशाह मुलानी, और साथ ही हैं पूरा मुलानी परिवार। छोटा बाजार कुरुक्षेत्र थानेसर से हैं श्याम शर्मा, मिली, चिराग, राघव, तनुज, पलक शर्मा, मास्टर उदिश। और बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया हैं, लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा के श्रोता हैं आप सभी। जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी। हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, और आप श्रोता हैं गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं आप सभी। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा की फरमाइश पहुंची है। ये मैसेज देखिए जब आया है, ये हम माफ़ कीजिएगा पहले ही शामिल कर चुके हैं। मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सिदारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरानी और हिना कौसर। अब देखिए सेम मैसेज दूसरे नंबर से है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती के श्रोता है सिद्धार्थ गोंडाने, हीरामन शेंडे, अर्पणा गोंडाने और प्रणय और प्रसिद्धि। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय की फरमाइश आई है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी विशालिनी, विशाल टिवांची खेड़ा। खेल बाजार पानीपत से है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष कोयल, डिगू, भाविक सिक्का। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। अगला मैसेज है हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव हरुड़ी चांडिल झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, मनमोहिनी महतो और दीन बंधु महतो। और आप सभी ने सुना चाहा है लता मंगेशकर और मन्ना डे को। फिल्म है श्री 420, शैलेंद्र की शब्द रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

अगले गीत की ओर बढ़ें तो उसे सुनने के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता है नारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। अगला मैसेज है बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब है से हैं सुधा शर्मा, काजल मीरा और अनामिका शर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की ख्वाहिश आई है। गंज डुंडवारा से है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद आयान और उस्मान। सोनू रविराज, गुलशन लकी, जालंधर सिटी पंजाब से ये अपनी फरमाइश पहुंचाई है। गांव पिपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। चंद्रनगर सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। बेरड़ी मध्य प्रदेश के श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तन्नु करमरकर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू, मनु रानू, अनय अनाया, ईशु बाबा, सपना शिवी, सोलोनी लूसिया और प्यारा पेंटर बाबू। कुंडेश्वर वाड़ा से हैं योगेश गुजराती। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता प्रियाली पार्थ और हागोड़े परिवार। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर हैं जसपुर उत्तराखंड के श्रोता। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ, नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। गांव नगर कोहरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद प्रणाली, सानवी और कल्पना देशमुख। एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा झारखंड गुमलाह के श्रोता हैं आप लोग, आप सभी। दरबार कॉलोनी सनावत से हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणय सांवले।

अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री रगेश घोषणे का घोड़के का मैसेज है, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई सिल्लौड़ छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरानाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार कुमकुम। और आप सभी ने सुनना चाहा है सुरेश वाडेकर और हेमलता को, फिल्म है पहेली, गीत संगीत है रविंद्र जी।

अगला गीत है आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर गांव ढांडी कुतुबपुर जिला हांसी से है रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुर्दी पर बेबी कीरत अवाना। मोताला महाराष्ट्र से है विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर आरती चिड़िया और ओम भैया। अगला फरमाइशी मैसेज है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से है अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से फरमाइश पहुंची है बबलेश पंवार डैनी और मनीष पंवार की ओर से। रामदेवरा से है दिनेश चौहान डांगरी से बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता है धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान और

पूजा परिहार। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा और दीक्षा कुश मूणत। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज ये मैसेज देखिए पहले शामिल किया जा चुका है। बाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश पहुंची है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से। गांव गला जिला अंबाला हरियाणा से है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। और ये मैसेज जो अभी आया है छोटा बाजार से, ये पहले हम शामिल कर चुके हैं। तो आप सभी की ख्वाहिश है मोहम्मद रफ़ी को सुनने की। फिल्म है हीर रांझा, गीतकार हैं कैफी आज़मी और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए ज्योतिष माँ को इस कार्यक्रम को समेटने की। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना और अपनों का बेहद ही ख्याल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामान्य

0: सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashwani News, Delhi.
1: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 260,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
4: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।